कालम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 हैं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो जरियो आहिन, उते सुठी खुराक ढोरन जी जरूरत आहे।
2: जी जा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जी जा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा।
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
4: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-1800-003।
0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो। जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
5: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
6: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश और रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तयाब आहिन।
5: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर, नज बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालानी।
6: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372 और 0242-460100।
7: अस्सलाम वालेकुम अदा।
8: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
7: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
8: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
7: न अदा?
5: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
7: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
8: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
7: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
8: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
9: 03013992836
5: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03151557024।
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
11: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فأو

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69

भागा कन रबाब, मेरा जिस्म जो है वो मानिंद एक साज रबाब के है, मन

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Lo Harniya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM.
3: हुकूमत हलंदड़ हफ्ते जी पुजाणीअ ते बि पेट्रोल ऐं डीज़ल महांगो करे छॾियो. पेट्रोल वधीक 5 रुपया 2 पैसा महांगो थियण खां पोइ 9,375.82 रुपया फी लीटर थी वियो. डीज़ल वधीक 5 रुपया 28 पैसा महांगो थियण खां पोइ 9,432 पैसा फी लीटर ताईं पहुच. पेट्रोलियम डिवीज़न पारां जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि पेट्रोल ऐं डीज़ल जा नवां अघ 12 खां 14 सेप्टेम्बर ताईं लागू हूंदा. वज़ीर आज़म मुल्क में बिजली जी लोड शेडिंग जो नोटिस वरितो. कंहिं बि इलाइक़े में 2 कलाकनि खां वधीक लोड शेडिंग न करण जी हिदायत. बिजली जी लोड मैनेजमेंट ते जाइज़ा इजलास दौरान शहबाज शरीफ बिजली जी लोड शेडिंग ते कावड़ जो इज़हार कंदे चयो त कंहिं बि इलाइक़े में 2 कलाकनि खां वधीक लोड शेडिंग न कई वञे. सिंध असेंबली जे मेंबर्स जो सिंध में बिजली जी बदतरीन लोड शेडिंग खिलाफ़ एहतजाज. स्पीकर अवेज़ कादर शाह समूरनि बिजली कंपनीज़ जे चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर्स खे 23 सेप्टेम्बर ते कमेटी इजलास में घुराइण जी हिदायत करे छॾी. सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जिलीना मेमण चयो आहे त लोड शेडिंग पाणी बिजली वारे वज़ारत जी नाहिली ऐं पाकिस्तान में गवर्नेंस जी नाकामीअ जो आला तरीन मिसाल आहे. हेस्को सेप्को ऐं के इलेक्ट्रिक जहिड़ा इदारा आवाम खे बुनियादी सहूलियतूं ॾियण में नाकाम थी चुका आहिनि. सिंध में 18 कलाक बिजली बंदि कई वञे थी. इहो मसलो क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट में बि भरपूर अंदाज़ में उथारियो वञे. रुगो बिजली न पर आवाम खे गैस ऐं पाणीअ जा मसला बि दरपेश आहिनि. स्पीकर बिजली कंपनीज़ जे सरबराहनि खे घुराइण जी हिदायत कंदे घरू वज़ीर खे चयो त हुन ते अमल दरामद न कर आया त अव्हां खे तकलीफ़ ॾींदासीं.
4: ज़ियाउल हक ने आखिरी तरमीम में आईन को बदला और उसमें होता था कि नेशनल असेंबली सूबों की अगर उन्होंने बाउंड्रीज चेंज करनी है उसका कोई आईनी तरमीम से ही हो सकती है. उसके अलावा अगर ऐसी कोई आईनी तरमीम करनी है
3: सूबनि जे सरहदनि बाबति क़ौमी असेंबली आईनी तरमीम नथी करे सघे. तरमीम लाइ सूबाई असेंबलीअ मां 2/3 जी अक्सरियत ज़रूरी आहे. ज़ियाउल हक अठी तरमीम ज़रिए आईन खे तब्दील कयो हो जंहिंखे दुरुस्त थियणु घुर्जे. सूबनि जे सरहदनि में तब्दीली बाबति क़ौमी असेंबली तरमीम नथी करे सघे. सदर बि तरमीम ते सूबे जे मंज़ूरी बिना सही नथो करे सघे. कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त जेकॾहिं क़ौमी असेंबली सिंध जे विरांगे बाबति को ठहराउ मंज़ूर कयो त सिंध असेंबली पहिरीं ई अहिड़े ठहराउ खे रद्द करे चुकी आहे. सिंध जे माण्हुनि बि पंहिंजो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो आहे ऐं असां सिंध जे आवाम सां गॾु बीठल आहियूं.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर.

0: नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रिया और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्ने के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000310509 03003105109।

0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर।
1: 03008 55 69।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
5: 03013992836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिला आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000002734। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तियाब आहिन।
1: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
3: हथे गुल मींदी पेरे गुल मींदी
4: आई अदी अज तो डाडी खुश पे नजर अची
5: छो न खुश थिया अदी जदे खा मुजे मुड़से ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो खरायो आहे त खीर जी पैदावार ईणी थी वई आहे ऐ हाणे पैसा भी ईणा था अचन ही दिस सोनियो चूड़ियो
4: तमा ब वनी चवा उन के त ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो ही खाराए
6: जी जान चारो मसालो हर वेजे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खा नालो वठी खरीद करयो।
7: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
8: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में, डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीह जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

0: 11:45. आमिर ज़िया के दौर में जमहूरियत के बहाली वाली तारीख दौरान शहादत माणींदड़ की अज 43 वर्सी मल्हाई पई वे वारसन ए पीपी अगौण की खैरपुर नाथन शाह में 12 सेप्टेम्बर के शहीद के मजारन से हाजिरी शहीद के भेटा पेश पीपल्स पार्टी जज शाम के इन शाह में जलसो भी थियल
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: खबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300338569
3: आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई
3: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202 0242460100

0: असली चीजां चारों मसालों जी सुन्याण पर ट्रेडमार्क नंबर 34,000 डीसी करे खरीद कंदा जीजान चारों मसालो ढोरे जो हाजमो दुरुस्त जीजान चारों मसालो ढोरे सेहतमंद जीजान चारों मसालो जीजान चारों मसालो आई जादा शोरूम महरा तुम्हारो इर्शाद ऑटोस आई होंडा शोरूम महरा पर नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब है सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इर्शाद ऑटोस ते पैंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जै में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इर्शाद ऑटोस हालानी रोड महरा पर राब्ते जे लाए 03201800003।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रिया और की महा से फौरन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में एक्ने के लिए मिल्क

0: एक्ने क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्ने क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105109, 03000-3105109।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
2: बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
4: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
6: 03013992836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-33-85-69।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

तूं मुस्कुराए दिल खे चुराए हलियो वे, तूं मुस्कुराए दिल खे चुराए हलियो वे, अखड़ियूं मिलाए जल्द लिकाए हलियो वे। तूं मुस्कुराए दिल खे चुराए हलियो वे, अखड़ियूं मिलाए जल्द लिकाए हलियो वे। जॾहिं ॾिसण जी मूं कई कोशिश लिकी वए, जॾहिं ॾिसण जी मूं कई कोशिश लिकी वए, मुंहिंजो सुकून तूं ई फिटाए हलियो वे। तुंहिंजे हुस्न रमज़ खे सम्झी नथो सघां, तुंहिंजे हुस्न रमज़ खे सम्झी नथो सघां, मुर्की अखियूं अखियुनि सां मिलाए हलियो वे। तुंहिंजे हुस्न जो जलवो आहे हूरिन परिन मिसिल, तुंहिंजे हुस्न जो जलवो आहे हूरिन परिन मिसिल, महजूर जो ख़्याल मटाए हलियो वए। तव्हां ॿुधी रहियो जी एफ एम नेटवर्क ऐं प्रोग्राम आहे म्यूज़िक मस्ती। प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती सां गॾु मां तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान गुलाब खान भेण। मुंहिंजा मिठा साईं, कहिड़ा हाल आहिनि? ठीकु आहियो, त वियो सही आहे अवांजी उमेद अला ताला तव्हां सभिनी मुंहिंजनि भाउरनि ऐं भेनरुनि आख़िर ख़ैरियत कई हूंदी। असांजूं दुआऊं तव्हां सां हर वक़्तु ऐं हर हंधु गॾु गॾु हूंदियूं आहिनि। अला ताला तव्हांखे सदाई ख़ुशि ऐं आबाद रखे, कॾहिं बि ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो, सदाई खिलंदा ऐं मुस्कुराईंदा रहो। त प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती हर जुमे जे ॾींहुं ऑनियर कयो वेंदो आहे, पर शेड्यूल तब्दील थियण जे करे हाणे तव्हां प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती हर छंछर जे ॾींहुं 11 वॻे खां वठी 1 वॻे ताईं ॿुधी सघंदा। ऐं हीउ हफ़्तेवार प्रोग्राम आहे, हफ़्ते में हिकिड़ो दफ़ो थींदो आहे, जेको पहिरियां जुमे जे ॾींहुं थींदो हुयो, हाणे छंछर जे ॾींहुं 11 वॻे खां 1 वॻे ताईं हीउ ऑनियर कयो वेंदो। हिन प्रोग्राम में छा हूंदो आहे? हिन प्रोग्राम में हूंदो आहे तव्हां सां मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं, उन खां अलावा तव्हांजा मोकिलियल प्यार भरिया मैसेजिस, ऐं उन खां अलावा तव्हांजे पसंदि जी चूंड मौसीक़ी, जेका तव्हांखे दिलि फरेब मौसीक़ी लॻंदी आहे। अॼोकी प्रोग्राम में बि सेम ईअं ई आहे, तमामु बहितरीन मौसीक़ी आहे, ऐं तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थींदा त उनखे 4 चंड लॻी वेंदा। तव्हांजो मैसेज असांजे प्रोग्राम जी सूंहं हूंदो, ऐं मैसेज करण जे लाइ तरीक़ेकार सवलो आहे, आसान आहे। पंहिंजे मोबाइल फ़ोन जो राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो ऐं मारो लिखो स्पेस ॾियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो, ऐं लिखी करे मोकिलियो असां 888-1 ते।

मुझे बिठा सही असा न सिर्फ मोरो वारा बल्कि पूरे नेटवर्क जा समूरा जे के लिसनर्स हैं वे कदन सखर लड़काणो मीरपुर खास मोरो मटियारी मातली सकरंड मेरापुर वारा भी प्यारा प्यारा मानू अस मौजूद है। मुझे याद है तो मुझे जो जुमे वो शो हों उनमें तकरीबन सभी स्टेशन हूँ मैसेज इंदा पर जो अज ही मुझे पेरो शो है ऐसू तो यारहें वगे का एक वगे तीन छंछर जी हानि थी तो उनमें उजा जुमे वाले लिसनर्स हैं छा मैसेज कर मुख्य बुधाइन था तो वाह असा थोड़ी बुधूँ पे था जे रेडियो जहाँ पुराना लिसनर्स हैं जो सदा ही असा जुड़ियल रहा तो उन्होंने लाई एक स्पेशल प्रोग्राम है उन्होंने पसंद जो प्रोग्राम है उन्होंने पसंद की इनमें मौसीकी होंगी उनकी गाल बोल होंगी उन अलावा इन प्रोग्राम में इंदर जी असा शो थे उनमें कोशिश कह एक लाइव कॉल का यकीन किया खुद इनके अवॉइड कह तो लाइव कॉल न क्या दोस्तों से मैसेज कचहरी क्या पर इंदड़ वक्त में अगर जरूरत महसूस थी तो इन शो में लाइव कॉल भी किया वो पर अज लाइव कॉल ना है अज सिर्फ सिर्फ मैसेज है तो मैसेज करने तरीकेकार एक दफो बीहर तक बुधा तो मोबाइल को स्पेस दियो स्पेस का लिखो पाँच शहर जो नालो लिखी कर मोकलो असा नहा 888-1।

त प्रोग्राम जे आगाज़ में हदीका कयानी जी ख़ूबसूरत आवाज़ आहे उहो शामिल कंदासीं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जेको आहे कलाम। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सिंह जे उन्हनि अज़ीम शख़्सियतुनि मां हिकु अथव जिन पंहिंजी शाइरी फ़िक्र ऐं सूफ़ियाना तालीमात वसीले सिंध जी सकाफ़त ॿोली ऐं इंसान दोस्तीअ खे अमर बणाए छॾियो। शाह साहिब जो नालो सिंध जे तारीख़, अदब ऐं रुहानियत में वॾी इज़त ऐं एतराम सां वरितो वञेव थो। ऐं संदसि शाइरी रुगो न सिर्फ़ु सिंध जे माण्हुनि लाइ पर सॼे इंसान ज़ात जे लाइ मोहबत ऐं अमन ऐं भाईचारे ऐं सचाई जो पैगाम खणी ईंदी आहे। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सिंध जो सिर्फ़ु शाइर न पर सिंध जी रूह, सकाफ़त ऐं फ़िक्र जो अज़ीम तर्जुमान आहे। संदसि शाइरी सिंध जी सुञाणप ऐं इंसान इंसानियत लाइ जे करे चइजे त हिकु लाज़वाल पैगाम आहे। ऐं जेसिताईं सिंध जी ॿोली ऐं सिंध जी सकाफ़त ज़िंदा रहंदी न तेसीं ताईं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो नालो ऐं फ़िक्र बि हमेशह ज़िंदा रहंदो। त अचो गंजी इंजॉय कयूं था हरीका कयानी जो ही ख़ूबसूरत आवाज़।

अधिका कैनी जो खूबसूरत आवाज़ ऐं अवां जूं सुंदर समातूं त मुंहिंजा मिठा साईं दोस्तनि जा मैसेजिस बि आहिनि, हुननि खे बि पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु कंदा हलंदासीं। ॻोठु दूरो ख़ान भेण खां शौकत अली भेण पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे, वॾी महिरबानी अदा शौकत। तव्हांजो मैसेज मुंहिंजी प्रोग्राम जुमे वारे में बि ईंदो आहे ऐं छंछर वारे प्रोग्राम में बि आयो आहे, त जो मतिलबु तव्हां जीअं FM 88 नेटवर्क जा रेग्यूलर लिसनर आहियो। महिरबानी मिठा, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया आहियो। नादिर अली भेण खे उन सां गॾु आहे, अली गुल भेण उन सां गॾु आहे ऐं चवनि था अदा आपका शो बहुत अच्छा है ऐं मास्टर मंज़ूर जे कलाम जी अदा जन फरमाइश कई आहे। त हाज़िर मुंहिंजा मिठासीं, मास्टर मंज़ूर जो कलाम बि तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। ऐं उन खां अलावा असांजे प्रोग्राम में शामिलु आहे मोरो शहर जे कलोड़ा कॉलोनी खां फैज़ान अली कलोड़ो। ऐं फैज़ान चवे थो त सर तव्हांजो प्रोग्राम ॾाढो सुठो आहे ऐं वॾी महिरबानी फैज़ान साईं, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया आहियो, उनजे लाइ खोड़ सारियूं मोहबतूं ऐं खोड़ सारो प्यार तव्हांजो ऐं तव्हां पहिरियों दफ़ो मुंहिंजे शो में शामिलु थिया आहियो। त अहिड़े ई तरीक़े सां ॿिया बि दोस्तनि जा मैसेजिस आहिनि, उन्हनि खे बि शामिलु कंदासीं, पर वक़्तु थिए पियो ब्रेक जो, त हलंदासीं शॉर्ट ब्रेक जे तरफ़ ऐं ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं ऐं वापसि अची करे शामिलु कंदासीं तव्हांजा मोकिलियल मैसेज ऐं अव्हांखे ॿुधाईंदासीं तव्हांजे पसंदि जी चूंड मौसीकी।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सोम

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

अदा जन फरमाइश कई है त असांखे खुशबू लगारी जो कलाम बुधायो त हाज़िर बाबा खुशबू लगारी जो कलाम तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदासीं ऐं असां सां गॾु आहे झुलड़ीअ खां ख़ालिक लाशारी ऐं चवंदा शो वी आई पी आहे फरज़ाना परवीन जो आवाज़ बि अदा जन खे कलाम जी अदा जन फरमाइश कई आहे ऐं डेडिकेट कनि था शिकारी अदा जेको तव्हां लिखियो आहे न भाउ मुंहिंजा मूंखे सच पुछो इहो सम्झ में कोन पियो अचेव ऐं ॿीहर लिखो त सुठे तरीक़े सां करे लिखिजोसि ऐं जंहिंखे तव्हां डेडिकेट कयो आहे ऐं शहज़ाद अली जमाली ॻोठु सईद ख़ान जमाली खां पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो मातलीअ खां वाह साईं वाह मातलीअ वारा भाउ स्पेशली मां तव्हांखे भलीकार चवां थो ऐं ॿिया जेके बि असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया आहिनि उन सभिनी खे भलीकार चऊं था त शो में शामिलु कयूं था शमन अली मीराल जो ख़ूबसूरत आवाज़ आहे ऐं उन खां पोइ वरी ख़ुशबू लिकारे जो कलाम तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाइबो त अछो इंजॉय कयूं शमन अली मीराल जे कलाम खे

0: शमन अली मीराली जो खूबसूरत आवाज़ ऐं अवां जूं सुंदर समातूं त दोस्तनि खे मां ॿुधाईंदो हलां त प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती जी एफ एम एच ई नेटवर्क तां हर छंछर जे ॾींहुं 11 वॻे खां वठी 1 वॻे ताईं ऑन एयर कयो वेंदो आहे। त दोस्तनि जा कुझु मैसेजिस आहिनि उहे बि पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु कंदा रहूं। साजिद अली मकली ठटा खां पंहिंजे प्रोग्राम ॿुधे पियो चवे थो, अस्सलाम वालेकुम डियर, नाइस शो। वालेकुम अस्सलाम डियर, थैंक यू वेरी मच। तव्हां ठटे खां ॿुधी रहिया आहियो, असांखे तमामु घणी महिरबानी आहे तव्हांजी, थैंक यू वेरी मच। हफ़ीज़ सोलंगी फ्राम मोरो खां असांजो प्रोग्राम ॿुधे थो, चवे थो प्रोग्राम तमामु सुठो आहे ऐं सलाम चवनि पिया समूरा असां जेके लिसनर्स आहिनि उन्हनि सभिनी खे ऐं सभिनी दोस्तनि खे जेको कलाम अदा जन लिखियो आहे उहो चवनि पिया त डेडिकेट कयो। त महिरबानी मुंहिंजा मिठा, तव्हां असांजे शो में शामिलु थिया आहियो। नंढड़ी हिकिड़ी ब्रेक आहे, ब्रेक जे तरफ़ हलंदासीं, ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं ऐं वापसि अची करे शामिलु कंदासीं तव्हांजा मोकिलियल मिठा मिठा प्यारा प्यारा मैसेजिस।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: It's 11:45 AM. This time check is brought to you by
3: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात।

नरम, साफ और खूबसूरत जल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहराब पर, 03003385569। खुशखबरी, अपनी जल्द को दे नई ताजगी, चमक और

0: के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120।
2: This program is brought to you by
3: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing
4: apna shehar apna ghar mehrabpur aur mehrabpur ki awaaz GAFM 94।

ये तो सभी मुझे मिचन प्यार भारे ने मेरे प्रोग्राम ही भली कार आई दोस्तों माजरत काफ़ी दिन का वही जुकाम ही गलो खराब है इन कर मुझे आवाज़ थोड़ा तक तब्दील महसूस हों तो गलो खराब है बाबा आई सर्दी अची रही है थोड़ो थोड़ो वेझो थी पी वे गर्मी जी है ना थोड़ो थोड़ो परे थी पी वे हाँ जैसे या सर्दी वेझो इंदी है गर्मी परे थी तो इन विचवारो जो टाइम होंद है ना वो सभी के लिए सेहत के हवा से ढो संगीन हों जर थोड़ो भी लापरवाही थी वही ना तो यो मुआरो ही कम हों गलो खराब हों तल भी ना त एहतियात से करो है एहतियात यो करो है तो भाई थदे पानी का थोड़ा पाने पान के बचाओ जो कि तमाम थदी शन उन्होंने इस्तेमाल घट कर बर्फ जो इस्तेमाल मुझे ख्याल में सफा ही न कर अगर फ्रिज जो पानी पियो था तभी वो नॉर्मल टेम्परेचर से हो इस्तेमाल करवा रात के टाइम में जी असा बाहर या भेनरू खुलियल आसमान के हेठा आरामी थी तो खुलियल आसमान के हेठा इन वक्त रात जो टाइम में 12:00 वगे का

राति ॾाढी सही तरीक़े सां थधी थी वेंदी आहे, त इन जे करे राति जो थधी थींदी आहे त पोइ ज़ुकाम थींदो आहे। त पंहिंजे लाइ का चादर ज़रूरु रखो ऐं उहा ओढ़ींदा कयो, ऐं चादर ओढ़ींदा त उन सां इहो थींदो जो तव्हांखे अहिड़े क़िस्म जी कैफ़ियत खां बची वेंदो जेका हिन वक़्तु मां जंहिं कैफ़ियत में आहियां। त दोस्तनि जा मैसेजिस आहिनि उहे बि शामिलु कंदा हलूं था।

गुलाब लिगारी जो गोठा है विशाम विशाम खान रिंद खां असो प्यारो भा शायर गाजी खान रिंद जो मैसेज आयो है उनसा गडा है फिजान ले रिंद आई चवन था सर दिल खुश कर दी आपने फरमाइश पूरी करो हाजिर अदा फरमाइश तह जरूर पूरी थी हाँ ही पूरी कर दिल जाए कयो बेहतरीन खुशबू लिगारी जो आवाज़ ढो सुठो है कोशिश कदस मुझे लाइब्रेरी में खुशबू लिगारी जो जो को सॉन्ग है को सुथड़ो पियल है तो मां तांके वो बुधराया तो जरूर बुधराइंदासे एक गाल याद रखो न सिर्फ तमाम बल्कि जेके भी असंजा लिसनर्स हैं वे समूरा असंजो सरमायो अथव सरमायो भी इन है जो अगर लिसनर आहे तो रेडियो आहे न मुझा साईं तो लिसनर्स के तमाम घनी अहमियत दिना हूं उ असाज लाइ तमाम घनी अहमियत भरिया हूँ त खुशबू लिगारी तव्हांखे ज़रूर ॿुधाईंदासीं तव्हां उन जे लाइ दिलजाए कयो हलूं था कंहिं ॿिए दोस्त जे मैसेज तरफ़ त असां सां गॾु आहे केरु आहे चवे थो सलाम गुलाब भाई आप कहां गुम थे शो नहीं करते थे अच्छा 78 मोरी का राजा हमीर चंद्र किशोर कुमार पवन कुमार टेलर मास्टर हीरा लाल ऐं आकाश कुमार जानी हाणे मुंहिंजो शो जेको आहे न उहो फ्राइडे वारी जॻह ते सेटरडे ते कयो वियो आहे सेटरडे ते हाणे तव्हां मूंखे ॿुधी सघंदा हिन ई साॻी टाइम ते जंहिं टाइम ते असांजो हू शो हूंदो हुयो उन ई साॻे टाइम ते तव्हां मूंखे ॿुधी सघंदा इंशाल्लाह ताला रेगुलर शो ई हलाईंदासीं तव्हां दिलजाए कयो बाक़ी जुमे वारो शो गुज़िरियल ॿिनि हफ़्तनि खां वठी न थी सघियो हुयो हुनजो सबबु इहो आहे त हीउ गलो ख़राबु ऐं बुखार वारी कैफ़ियत बाबा असां बि बीमार थींदा आहियूं अहिड़ी ॻाल्हि न आहे रुगो तव्हां न आहियो थींदा त असां सां गॾु आहे एहसान जान सहरदी माड़ी अच्छा इहो सहरदी माड़ी इहो किथां खां आहे मूंखे इन ॻाल्हि जी सम्झ बिल्कुलु बि कोन आई आहे त एहसान जान तव्हां मूंखे ॿीहर मैसेज कजो जंहिं में वाज़े तौर जेको आहे न लिखी करे ॿुधाइजो त पुलजी स्टेशन खां पोइ पठाण खान खोसो जो मैसेज आयो चए थो भाईजान गाना ॿुधायो दादा गाना ई गाना हलनि पिया मुंहिंजा मिठा साईं तव्हां दिलजाए कयो सजाद अली मकली ठटा खां अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मुंहिंजा मिठा साईं महिरबानी तव्हांजी तव्हां बि असांजे शो में शामिलु थिया आहियो त हिन वक़्तु खुशबू लिगारी जे आवाज़ जे तरफ़ हलंदासीं ऐं उन खां पोइ हलंदासीं न्यूज़ ब्रेक जे तरफ़

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: ज्यादा तस्दीक थी जवाबदार कासिम कुंडवाणी गिरफ्तार किया है जैन डोह जो इतराब किया है जांच कर रहा हूं।
4: इराक में तेल की लाइन से हमलन बाद सऊदी परदेही वजीर फैसल बिन फरहान जो इराकी हम मुनसिब से फोन पर राबतो बिन तरफन लागापन समेत ताजी सूरत हाल से गाल बोल इराकी परदेही वजारत मौजूद इन्हीं अगवान खिते की तब्दील थी सूरत हाल से गाल राबतन में रहने से इतफाक किया।
3: यमन के हुसैन बाबिल मंदब जो कंट्रोल संभालने बाद अमरीकी आबी रस्ते में गश्त कर शुरू कर दिनों बाबिल मंदब के आम बेट मेवन से भी कब्जे की दावा यमनी फौजन है त मुकमा बाबिल मंदब में हुसैन के थाकन से बमबारी कई है जै दौरान हुसैन जो नुकसान थो है।
4: आपने हरमुज से अरब मुल्क से गाल सूमरवारे ढी ओमान में थन्द ईरान तस्दीक कर छी इस्माइल बकाई है आपने हरमुज को कंट्रोल ईरान वट है तेल कीमतन में वाद जो भी जिम्मेवार अमेरिका है अस जंग वारी हालत में आयो सऊदी अरब उर्दन ए जापान के ईरान खिलाफ ठहराव की हिमायत करण से नतीजा भोगना पवंदा।
3: हुकूमत पेट्रोल महांगो करण जो नव रिकॉर्ड कायम कर वरतो पंजन डीन में पेट्रोल महांगो करण जो सिलसिलो बरकरार पेट्रोल वधीक पंज रुपया ब रुपया पैसा महांगो थियण बाद 375 रुपया 82 पैसा फी लीटर थी वो जडे त डीजल 5 रुपया 28 पैसा महांगो थियण बाद 403 रुपया 32 पैसा फी लीटर तई पहुंची वो ट्रांसपोर्टर्स भी पेट्रोल महांगो थियण जो जवाब जणाईंदे भाड़न में गाटे ट्रोड़ वाद करे छी खाद खुराक वारन शयुनि जा अघ भी वधी विया शहर सख्त परेशान शहर सखर में शहरी इताद जो एतजाज अलामती जनाजो भी कढ़ियो वयो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मैरापुर असा वट जगह जो जारियों जगह जा पावा पाइप डेढ़ ब चार छह नव बारह इंच में प्लेन कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ खुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 तौकीर अहमद 0306-1623-793।

0: जी जान तारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रियां और कीमहा से फौरन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03008 5569
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नजगर डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 03013992836
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

दोस्तों जो मैसेजेस आहिनि उहे पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कंदा था हलूं। घोटु उमेद अली ज़रदारी खां ग़ुलाम सरवर बागाई पंहिंजे प्रोग्राम ॿुधे पियो। चवे थो सर अला कंदो ख़ुशि हूंदव सदा अदा आमीन। अलाह साईं तव्हांखे बि ख़ुशि ऐं आबाद रखे। स्पेशली मां तव्हांखे भाउ ग़ुलाम सरवर बागाई साहिबु तव्हांखे पंहिंजे हिन शो में भलीकार चवां थो। थैंक यू वेरी मच। तव्हां असांजा पुराणा लिसनर्स आहियो, हमेशह असांजे प्रोग्रामनि में शामिल थींदा आहियो। थैंक यू। हुन जे लाइ शमन अली मीरअली जे कलाम जी अदा जन फरमाइश कई आहे। त मुंहिंजा मिठा साईं शमन अली मीरअली मां ऑलरेडी प्ले करे चुको आहियां, ॾाढो सुठो हिकिड़ो सॉन्ग हो, पर मां कोशिशि कंदुसि त तव्हांखे शमन अली मीरअली जे कलाम शमन अली मीरअली जो कलाम ज़रूरु ॿुधायां। ऐं अदा जन डेडिकेट जेको कनि था उहो बूरो खान लाखो आज़िज़ अमानुल्लाह विस्तड़ो खे। त महिरबानी मुंहिंजा मिठा साईं, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। थैंक यू वेरी मच। तव्हां असांजे शो में शामिल थिया। घोट दलेल खान ज़रदारी खां हाजी सावल ज़रदारी पंहिंजे प्रोग्राम ते पियो चए थो, सर सलाम, प्रोग्राम वेरी नाइस। ऐं डेडिकेट करे थो ग़ुलाम सरवर बागाई भूरो खान लाखो खे। अदाब सावल ज़रदारी साहब, थैंक यू, लख एहसान लख कुर्ब तव्हांजा। तव्हां असांजे शो में शामिल थिया आहियो, उन जे लाइ तमामु घणियूं महिरबानियूं ऐं खोड़ सारो प्यार अव्हां जे लाइ। ऐं असां सां गॾु आहे केरु आहे अल्ताफ़ अली गाडाही बलोच फ्राम कराची से। चए थो गुड मॉर्निंग भाई, हाउ आर यू डियर? आई एम फाइन। ऐं चवां था यूअर शो इज़ वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। अदा तव्हांखे असांजो शो पसंदि अचे पियो, हुन जे लाइ लख कुर्ब तव्हांजा, अहसान। ऐं तव्हांखे मां पंहिंजे स्पेशली पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार बि चवां थो। ऐं लगारी अच्छा बिशाम खान रिंद खां शायर गादी खान रिंद जो ही टियों मैसेज आयो आहे। अदा तव्हांजी फरमाइश असां पूरी कई आहे, ऐं उमेदु आहे तव्हां उन सॉन्ग खे इंजॉय कयो हूंदो, ॿुधो हूंदो।

तव्हांजा मिठा साईं, ज़िंदगी हिकु ॾिघो सफ़र आहे जंहिंमें कॾहिं ख़ुशियुनि जा लम्हा अचनि था त कॾहिं ॾुख परेशानियुनि ऐं आज़माइशुनि सां मुंहुं ॾियणो पवे थो। हिन सफ़र में जेकॾहिं को सचो मुख़लिस ऐं वफ़ादार साथी गॾु हुजे त ॾुखिया रस्ता बि आसान महसूसु थींदा आहिनि। साथ सिर्फ़ कंहिंजे भरिसां बीहण जो नालो न आहे, पर साथ जो मतिलबु आहे ॾुख में हौसलो ॾियणु, ख़ुशीअ में ख़ुशि थियणु, मुश्किल वक़्त में हथ न छॾणु ऐं ख़ामोशीअ खे बि सम्झणु। सचो साथी उहो हूंदो आहे जेको वक़्त जे बदिलजण सां पंहिंजो रवैयो न बदिलाए। ज़िंदगी में दोस्त, शोहरत ऐं आसाइशूं पंहिंजी जाइ ते अहम आहिनि, पर हिकु मुख़लिस साथीअ जी मौजूदगी उन्हनि सभिनी खां वधीक क़ीमती हूंदी आहे। जॾहिं इंसान मायूस थी वञे, रस्ता बंदि नज़र अचनि ऐं उमेद ख़तमु थियण लॻे न, तॾहिं हिकु मोहबत भरियो जुमिलो ऐं हिकु सचो साथ इंसान खे ॿीहर बीहण जी ताक़त ॾेई सघे थो। जेको जुमिलो हूंदो आहे त तुंहिंजो हुजे साथ त सफ़र में थकावट महसूसु नथी थिए, त तुंहिंजो साथ हुजे त ॾुख बि अधूरा लॻनि था ऐं ख़ुशियूं ॿीणियूं थी वञनि थियूं, ऐं तुंहिंजो साथ हुजे त ज़िंदगीअ जी हर मोड़ ते उहो यकीन रहे थो त असां अकेला न आहियूं। ऐं ज़िंदगीअ जे हिन सफ़र में अहिड़ा माण्हू हमेशह साण हुजनि जिन जो साथ मतिलब परस्तीअ खां पाक, मुहबत सां भरपूर ऐं वफ़ादारीअ सां मज़बूत हुजे। त अहिड़ो इज़हार करे रही आहे फरज़ाना परवीन बि, त अचो त फरज़ाना परवीन जो ई बहितरीन हिकिड़ो सॉन्ग ॿुधूं।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: सोनी, अज त डाढी खुश थी लगे।
2: हा साईं, गाल भी एड़ी आहे।
1: भला मुखे भी बुधाए केड़ी गाल आहे।
2: चाचे, जुम्मन जी खुशहाली जो राज खबर पयो आहे।
1: छा छा?
2: उहे पेंजे ढोरन के जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइन। ही चारो ढोरन जो हाजमो दुरुस्त करे तो, ढोर सेहतमंद थियन ता, गोश्त सा गडोगड खीर भी वधे तो।
1: वाह सोनी वाह, वाह जी गाल बुधाई। पर किथे मिलंदो यो जी जान सखर चारो मसालो?
2: साईं, रेडीए थे ता बुधाइन। बुध अजी वठी अज।
1: मां हाणे ई थो वञा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं।
2: हा साईं हा।
3: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
5: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
6: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई।
5: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
6: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601100।
7: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
8: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्थ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

ॿुधाइजो। ऐं हफ़ीज़ सोलंगी मोरू शहर खां पंहिंजे प्रोग्राम ॿुधे पियो, चवे थो जानी गुलाब छा हाल आहे। त जानी मां बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियां, तव्हां जूं दुआऊं आहिनि। चए थो अदा प्लीज़ प्ले मुमताज़ मोलाई हथ मथे कयासीं। अदा इहो मुमताज़ मोलाई जो मुंहिंजे ख़्याल में कलाम न आहे, बरहाल मां तव्हांखे प्ले करे ॾियां थो। ऐं चवनि था त पहले में FM सुनता था, लेकिन आपकी वजह से अब शामिल भी हो रहा हूं। अदा इहे तव्हांजूं मुहबतूं आहिनि, इहो तव्हांजो प्यारु आहे जेके असांजा ॿुधंदड़ आहिनि उन्हनि सभिनि जूं, जेके असांजे चवण ते असांजे प्रोग्रामनि में शामिलु थींदा आहिनि ऐं पंहिंजी मौजूदगीअ जो असांखे अहसासु ॾियारींदा आहिनि। ऐं असांखे यकीन कयो, हर आरजे जी पंहिंजी पंहिंजी हिकिड़ी तलब, पंहिंजी पंहिंजी ख़्वाहिश ऐं पंहिंजो पंहिंजो नज़रियो हूंदो आहे। मुंहिंजे नज़रिए मुताबिक़ मुंहिंजे शो में जेतिरा मैसेज ईंदा आहिनि त मूंखे उन जी तमामु घणी ख़ुशी महसूसु थींदी आहे। मां ईअं महसूसु कंदो आहियां त हा बिल्कुलु माण्हू मूंखे पसंदि करे रहिया आहिनि, तॾहिं मूंखे मैसेज करे रहिया आहिनि। त इहो तव्हां असांजी हौसला अफ़ज़ाई कंदा आहियो, असांखे बि शो करण में तमामु घणो मज़ो ईंदो आहे। उन जे लाइ असां तव्हांजा तमामु घणा शुक्रगुज़ार आहियूं। अस्सलाम वालेकुम भाई, प्लीज़ प्ले सॉन्ग तूं मुंहिंजो सनम आहे मां तुंहिंजो सनम। वाह साईं वाह। अल्ताफ़ अली गाॾाही बलोच कराचीअ खां, यार कलाम ॾाढो ज़बरदस्त तव्हां मूंखे चयो आहे, उहो तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। ऐं पर पहिरियां त हथ मथे कयूं, त इहो बि मशहूरु कलाम ॾाढो हलियो, हथ मथे कयासीं तूं ॾाढो आहे। इन जे करे त ॾाढा जेके आहिनि न माण्हू, उन्हनि खां बाबा बचणु घुरिजे। त तव्हांखे मां ॿुधायां थो पने आकल बि पपन भुलो जो कलाम, ऐं इहो अदा जन फरमाइश बि कई आहे। ऐं उमेदु आहे त सभु गॾिजी हिनखे इंजॉय कंदा। ऐं उन खां पोइ तव्हां नंढड़ो हिकिड़ो ब्रेक आहे, ब्रेक खां पोइ वरी वापसि जंहिं महिल ईंदासीं त पोइ कलाम हलाईंदासीं तूं मुंहिंजो सनम आहे मां तुंहिंजो सनम आहियां।

तव्हांजी महिरबानी ऐं चवे थो अलाह साईं तव्हांखे आबादु कंदो ऐं अदा जन सलाम चवनि पिया सर हाकिम अली जिस्कानी साहिबु अली अनवर भंड साहिबु गुलाब ख़ान भेण ऐं चवनि था तुंहिंजी सिक सुहिणा सडरायो अच्छा ममताज़ लाशारी जे आवाज़ में अदा जन फरमाइश कई आहे।

असांजे शो में घोटु उमेद अली ज़रदारीअ खां हे ग़ुलाम सरवर बागाई महिरबानी मुंहिंजा मिठा साईं, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया आहियो, लख कुर्ब लख अहसान, ऐं तव्हां असांजे प्रोग्राम जी सूंहं बणिया, उन जे लाइ तमामु घणा असां तव्हांजा थोराए था।

मुंहिंजे मिठा ताईं प्रोग्राम जो वक़्तु बि पहुची वियो आहे। पंहिंजी पुॼाणीअ ते वञण खां पहिरियों हमेशह वांगुरु तव्हांखे चवंदासीं पंहिंजो घणे खां घणो ख़्यालु रखो, पंहिंजनि दोस्तनि जो, पंहिंजनि मिटनि माइटनि जो ख़्यालु रखो। ऐं कोशिशि इहा कयो त तव्हांजे दिलि मां कंहिंजे लाइ बि का बि अहिड़ी ॻाल्हि न निकिरे जेका हुन जी दिलि आज़ारी करे वठे। त पाड़े वारनि जो ख़्यालु रखंदा कंदव, पंहिंजनि दोस्तनि जो ख़्यालु रखंदव, त तव्हांजी ज़िंदगी बि खुशहाल थी पवंदी। ऐं पंहिंजे बचनि खे तालीम ज़रूरु ॾियो, जीनी बि दुनियावी तालीम, ऐं न्याणियुनि खे बि ज़रूरु तालीम ॾींदा कयो। त वेंदे वेंदे मुमताज़ लाशरी जी ख़ूबसूरत आवाज़ तव्हांजी नज़र कयूं था, ऐं उमेद कयूं था त नेक्स्ट शो थोरी अगरि हयाती साथ ॾिनो त वरी पाण वेड़े तरीक़े सां गॾु हूंदासीं। तेसिताईं जे लाइ पंहिंजे मेज़बान गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह वाही अलाह निगहबान।

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: कोई कुछ भी नहीं करेगा, मैं गरीब हूँ ना, ऐसे ही मर जाऊंगा. कोई साथ भी नहीं देगा, ना शरीयत वाला ना.
4: जो पुराने तबलीगी मरकज वटा लाश मिलियो, वाकियो शकी हुजण ते पोस्टमार्टम कराए वयो त बाड़ीअ सां ज़्यादती तस्दीक थी. जवाबदार कासिम कंडवाणी गिरफ़्तार कयो वियो आहे, जंहिं ॾोह जो इतराफ़ कयो आहे. वकीलनि जो निंगरीअ जे क़तल वारे वाके ख़िलाफ़ इतिजाज, तालका इस्पताल बि सहूलियतूं ॾियण जो मुतालबो.
5: इराक में तेल जी लाइन ते हमलनि बाद सऊदी वॾे वज़ीर फैसल बिन फरहान जो इराकी हम मुनसिब सां फोन ते राबितो. ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि समेत ताज़ी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल कई वई. इराकी परॾेही वज़ारत मूजिबि ॿिन्ही अॻवाणनि खे तेज़ी तब्दील थींदड़ सूरतहाल ते ॻाल्हियूं थियूं. राबतनि में रहण ते बि इतफ़ाक़ कयो.
4: यमन जे हुसैन बाबिल मंदब जो कंट्रोल संभालण बाद आलमी आबी रस्ते में गश्त शुरू करे छॾियो. बाबिल मंदब जे आम बेट मेवन ते बि कब्ज़े जी दावा. यमनी फ़ौज चयो आहे त मुखा ऐं बाबिल मंदब ऐं हुसैन जे थाकनि खे बमबारी कई आहे, जंहिं दौरान हुसैन जो वॾो नुक़सान थियो आहे.
5: आमने अरमुज़ ते अरब मुल्कनि सां ॻाल्हियूं सूमर वारे ॾींहुं ओमान में थींदियूं, ईरान तस्दीक करे छॾी. इस्माइल वकाई चयो आहे त आमने अरमुज़ जो कंट्रोल ईरान वटि आहे. तेल क़ीमतनि में वाध जो ज़िमेवार बि अमेरिका आहे. असां जंग वारी हालत में आहियूं. सऊदी अरब, उर्दन ऐं जापान खे ईरान ख़िलाफ़ ठहराउ जी हिमायत करण ते नतीजा भोगणा पवंदा.
4: हुकूमत पेट्रोल महांगो करण जो नओं रिकॉर्ड क़ाइम करे वरितो. पंजे ॾींहं बि पेट्रोल महांगो करण जो सिलसिलो बरक़रार. पेट्रोल वधीक 5 रुपया 2 रुपया पैसा महांगो थी वियो. 375 रुपया 82 पैसा फी लीटर मुक़रर, जॾहिं त डीज़ल 5 रुपया 28 पैसा महांगो थियण बाद 403 रुपया 32 पैसा फी लीटर ताईं पहुची वियो. ट्रांसपोर्टर्स बि पेट्रोल महांगो थियण जो जवाबु ॼणाईंदे भाड़नि में घाटे टोड़ वाधि करे छॾी. खाद खुराक वारनि शयुनि जा अघ बि वधी विया. शहरी सख़्त परेशान. सखर में शहरी इतिहाद जो एहतजाज अलामती जनाज़ो बि कढियो वियो.
5: इंसाफ़ जे वक़्त फरामी ज़रूरी आहे. ज़िले अदालतनि ऐं हाई कोर्ट्स में राबतनि खे बि बहितर करणो पवंदो. सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस आफरीन चयो आहे त ज़िले अदालतूं इंसाफ़ वारे निज़ाम में करंगे जी हॾी वारी हैसियत रखनि थियूं. नौजवान जजिस बहितरीन अंदाज़ में इंसाफ़ जी फरामी यकीनी बणाइनि.
4: 1965 वारी जंग जे हीरो शहीद मेजर राजा अज़ीज़ भट्टीअ जी 61 वर्सी. सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ, वॾे वज़ीर सिहत मुराद अली शाह ॿियनि पारां भेटा पेश. सदर आसिफ़ ज़रदारी चयो त शहीद मेजर राजा अज़ीज़ भट्टीअ जी क़ुर्बानी वतन जी मिटी ऐं तक़द्दुस लाइ रोशन मिसाल आहे.
5: आमिर ज़िया जे दौर में जमहूरियत जी बहाली वारी तहरीक दौरान शहादत माणींदड़नि जी अॼु 43 वर्सी मल्हाई पई वञे. वारसनि ऐं बीबी अॻवान जे ख़ैरगुनासनि शाम में 12 सेप्टेम्बर जी.
6: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे. सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर. सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे. होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद. आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो. कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर. फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी. होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी. आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर. राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359210.

0: कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और की महासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार, मेहरापुर, 03000-310509-0300-310-5109।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
4: अस्सलाम वालेकुम। अदा
5: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न? अदा
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
7: 03013992836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
9: लगाण दंदन में माकोड़ी लगाण, लेजर ए चांदी वाली भराई।

ओके जी, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा कलाम क्योंकि आप लोगों ने बिल्कुल सुना होगा। इसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत से लोग, खूबसूरत से लोगों को खूबसूरत सी महफिल में वेलकम कहते हैं। और अगर आप भी हसीनों खूबसूरत बनना चाहते हैं तो जनाब खूबसूरती की दुनिया में जरा कदम रखिए और सुनिए हमारा प्रोग्राम ताकि आप लोगों को इस चीज का पता चल जाए कि यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बातें की जाती है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जो बातें की जाती है वो इतनी ज्यादा जबरदस्त होती है कि भाई आप लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके वो तमाम जो चीजें हैं खूबसूरती के मामले में जो कि आप लोग जरा पीछे हैं, भाई आप लोगों को कोई बताता नहीं है, कोई समझाता नहीं है, कोई आप लोगों को गाइड करने वाला नहीं होता, तो भाई आप हमारे प्रोग्राम से बहुत सारी चीजें मालूम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं और उसके बाद अपनी खूबसूरती को एनहेंस कर सकते हैं। तो अगर आप भी हमारे साथ मौजूद है, जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है वो जरा सबसे पहले बता देते हैं। ओके जनाब, तो आज की जो सवाल का टॉपिक होने वाला है वो कुछ इस तरह से होने वाला है, आज पहेली है या फिर ऐसे सवाल समझ लें, बस जो भी है बस आसान सा होने वाला है। तो आप मुझे ये बताइए कि जनाब कौन सा जानवर है जो काले रंग का दूध देता है। भाई आप लोगों ने ये थोड़ा सा हमें सुनने में मतलब ऐसा ना थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि भाई हमेशा हमने देखा है दूध तो भाई व्हाइट कलर का होता है, सफेद कलर का होता है, लेकिन ऐसा भी एक दुनिया में जानवर पाया जाता है जो काले रंग का दूध देता है। बिल्कुल जी, आप लोग मुझे उसका नाम बताने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपना सेलफोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जीए लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। और जीए लाड़काना FM 88.8 के पेज के ऊपर जब आप आएंगे तो वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी, जैसे आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा, ठीक है। मैं लाइक का सबसे पहले इसलिए कहती हूँ क्योंकि बहुत से लोग बड़े कंजूस होते हैं, वो पोस्ट को लाइक ही नहीं करते हैं, तो भाई लाइक किया करें, कमेंट किया करें, उसके बाद आप शेयर किया करें, ये तीनों काम आप लोगों के हिस्से के हैं, तो जल्दी जल्दी से अपने हिस्से का काम निपटाइए और टॉपिक को फॉलो कीजिए। अच्छा, मुझे आज आप बताने वाले हैं कि वो कौन सा जानवर है जो काले रंग का दूध देता है। हाँ जी, उसका दूध जो है वो ब्लैक कलर का है। मुझे जल्दी से जवाब बताइए और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है तो भाई आपको वेलकम कहा जाता है, जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी। और यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग मौजूद हैं और अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करें तो वो भी हमारे साथ शेयर किया करें क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने वाले लोग जो हैं वो बड़े सेटिस्फाइड हो चुके हैं क्योंकि जिंदगी में अगर देखा जाए तो भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स वैसे ही होते हैं, तो जिंदगी में स्किन के प्रॉब्लम्स को जरा थोड़ा कंट्रोल में रखिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऑल स्किन टाइप के लिए है, हर एक प्रॉब्लम का हल है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स फॉर्मुलेशन है, अल्फा आर्बुटिन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें मिलकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम तैयार हुई है जनाब। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, आप जब अपने करीबी जनरल स्टोर पर जाइए तो वहाँ से नाम लेकर पाइए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल अभी तक नहीं हुई है तो उसके लिए आपको नंबर बताऊंगी, उस नंबर के ऊपर आप राब्ता कीजिएगा। तो नंबर क्या होने वाला है जनाब, नंबर है 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 पंजाह 970 ॿियो नंबर आहे 03-27-38-43-09 ॿुड़ी 332 73-84-309 ही नंबर आहिनि जेके तव्हां डायल कंदा पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो, पंहिंजे खूबसूरती में इज़ाफ़ो आणियो। बाबा खूबसूरत रहण, खूबसूरत ॾेखारण हर कंहिंजो हक़ हूंदो आहे, सो तव्हां बि पंहिंजो हक़ सां वठो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करणु स्टार्ट कयो, ठीकु आहे। ऐं यहां पर हमारे साथ गुलाम फातिमा मौजूद जी, गुलाम फातिमा चन्ना हमें सुन रही है और बल्कीस चन्ना हमें सुन रही है, अब्दुल कदीर चन्ना हमें सुन रहे हैं, कुरेशी गोट सखर से आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। गुलाम फातिमा तो भाई छोटी सी हमारी लिसनर है, बड़ी हमारी पक्की वाली लिसनर है तो वेलकम कहते हैं, थैंक यू सो मच, आप हमारा प्रोग्राम इतने शौक से सुनते हैं। और जी फरवा गुल हमें ज्वाइन कर चुकी है, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, हाय आपी, आपकी बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं कैसे। और बरकत रमदानी जमाली बलोच हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम,
और बलूचिस्तान से आप हमारे साथ मौजूद हैं और ये हमारे साथ फरवा कहती हैं आप ही सॉन्ग रिक्वेस्ट है भले महबूब कर माना लगी तो प्यारे जी काबिल डेडिकेट स्पेशली आप और तमाम लिस्टनर्स के नाम ओके जी डन हो गया और फहीम भाई हमारे साथ कहते फहीम शेख विसरी सारो लोग विसरे सारो लोग शालन विसरी तू तोखे केडो मुंह सांढ़ियो आहे साह में वाह वाह वाह वाह वाह वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम अदरत अदा चाल आहे खुश आयो सफा चा कुसलेट कलम मस जी डई इजाफो थी वियो कहते प्रोग्राम त लाजवाब आहे अमा मांगे थैंक यू सो मच प्यारा सोना भा तमान यो हाल हवाल डेज स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कई कोन आई तमान गानो लिखियो बिल्कुल ता जो गानो बुदू था बाबा गज्जी करे बुदनासी और हमारे साथ है ये रशीद खोसो भाई कहां से सुन रहे हैं इब्राहिम शाह बुखारी दरगाह से आपका शो सुन रहा हूँ और हैदराबाद से भी अच्छा हैदराबाद से मतलब आप हैं कटे सटे कहते हैं आपका प्रोग्राम नाइस है कोई भी सिंधी सॉन्ग मुमताज मलाइका सुनाइएगा हाजिर हाजिर और फहीम भाई कहते हैं वाह दादा तमाम बेहतरीन कलाम आहे और चाचा खालिद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बेटा सिडो हाउ आर यू हो फाइन बेटा मां सफा ठीक है चाचा तमाम पानी हाल अहवाल बुधायो तबियत जो दसियो की आयो ठीक ठाक और किशोर भाई कहते हैं सलाम अदा स्मार्ट हाजिर आहे स्मार्ट भाई वेलकम वेलकम कहते तू खूबसूरत मानो जो जिक्र कंदो आही पोए पान डे समझा तो हां भली ता पान डे समझो तमाम जलाई चवंदी आया अच्छा मोहम्मद जमान भाई कहते हैं गुड आफ्टरनून एंड वेलकम माय स्वीट बुआ जी शो वीआईपी है हमेशा की तरह थैंक यू वेरी मच पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिए और चाचा खालिद क्या कहते हैं

0: बिल्कुल जी, डेज स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या बात है, चाचा खालिद कहते हैं कि मेरी तबीयत में मजा नहीं रहता आजकल, फिर भी आपका डेज स्किन ब्यूटी शो जरूर देखता हूँ, बस आप मेरे SMS रीड किया करें। बिल्कुल जी चाचा, आपके मैसेजेस रीड रखते हैं। और गुलाब जो गुल हमारे साथ ही, गुलाब जो गुल वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, सिस्टर असां के केड़ी खबर है शायरी छा आहे, असां यूं लिखंदा आहियूं जेको तव्हां खे नायूं चई सघंदा। अच्छा चलो ठीक आहे, सुठी ॻाल्हि आहे। वैसे बि कहते हैं कि जो हम कह नहीं पाते उसको लफ्ज़ों में बयां कर देते हैं। और मोहम्मद हनीफ हमें सुन रहे थे, नाइस योर शो, थैंक यू वेरी मच प्यारा भा। अनवर भाई कहते हैं बस इहो था पुछूं, अदी खुश आयो न? हा अदी तव्हांजी सफ़ा खुश आहे। अनवर भाई तव्हां ॿुधायो, ठीक ठाक आहियो, मज़े में? और किशोर भाई तव्हां टॉपिक जो जवाब ॾिनो आहे काला, इहो वरी चाहूंदो। अच्छा हिदायतुल्ला अहमदानी कहती अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? असां सां भी दिल लगियूं, हेॾे बि ठगियूं होॾे बि ठगियूं मास्टर। हा हा बिल्कुल, इहो गानो हलायूं था तव्हांजे लाइ ऐं ॾाढो भलो सॉन्ग आहे, सो मिलजी करे इंजॉय कंदासीं। दर्दी दिल हमारे साथ मौजूद ही, वालेकुम अस्सलाम, चंदा आपकी बिल्कुल ठीक ठाक है, माशाल्लाह माई मोस्ट फेवरेट आज से। आपको भी वेलकम कहते हमारी प्यारी स्वीटी दर्दी दिल। चले यहाँ पर हम बहुत ज्यादा आप लोगों के साथ बातें करेंगे, आप सब लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद हो गया। यहाँ पर टाइम हुआ है जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं, और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद हम जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आएंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए, क्योंकि आपका हमारे साथ पूरी पूरी 3 बजे तक है। सुनते रहिए और बहुत ज्यादा बातें हैं जो कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो आपने कहीं नहीं जाना, मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूं। सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए। आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो, पेश आहे व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो व्हाइट एश ब्यूटी सोप। व्हाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: जा पीउ रेडियो ते चारे मसाले जो बुधाइन पया, भला इहो त बुध ऐं वठी अच।
3: जीजा ढोर चारो मसालो हाज़मेदार, वधाए खीर ऐं गोश्त जी पैदावार। 50 सालनि खां आज़मायल सखर वारनि जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ऐं जानवरनि जे डॉक्टरनि खां नालो वठी तलब कंदा।
4: हा भाग भरी चङो थो लॻे, मां हाणे ई थो वठी अचां।
5: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94
5: मन रो

क्या बात है, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली 92 नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब, यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ बातें हो रही है और बातें क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं उन तमाम तो लोगों को बताना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भाई आप सारे लोग भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके अपनी खोई हुई खूबसूरती को वापस ला सकते हैं, अपनी खूबसूरती को रिपेयर कर सकते हैं और अपनी खूबसूरती को हमेशा के लिए लॉक भी कर सकते हैं। क्योंकि हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स का इंतखाब कर चुके होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट यूज कर चुके होते हैं और जब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने यूज कर लिए होते हैं तो उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो हमारी स्किन के हिसाब से नहीं होते, हमारी स्किन टाइप के लिए नहीं होते, तो उनको इस्तेमाल करने के फौरन बाद ही जब हमारी स्किन जो है वो खराब होना स्टार्ट हो जाती है तो हमें ये लगता है कि भाई सारे प्रोडक्ट जो होते हैं मार्केट में वो ऐसे ही होते हैं। तो ऐसा कोई भी सीन नहीं होगा जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपकी स्किन को रिपेयर करती है। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप जानते हैं कि ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है और मेडिकेटेड फार्मूला होने के साथ साथ ऐसे जनाब स्किन के जो डॉक्टर्स होते हैं ना, उन्होंने ये फार्मूला ईजाद किया है, उन्होंने ये फार्मूला बनाया है और जिसके अंदर आपके लिए वाइटामिन ई बीड्स हैं, माइक्रो बीड्स हैं, अल्फा आर्बुटिन है, कोचिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें ऐड की गई। और ये जो वाइटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स है ना, ये पाकिस्तान में 2 से 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें आप लोगों को मिलने वाले। और इसका फायदा ही होता है कि भाई जो आप लोग महंगे महंगे फेशियल्स कराते हैं ना, खास करके खवातीन, तो उनको जो फेशियल के बाद जो अच्छा सा निखार मिलता है, अच्छा सा रिजल्ट मिलता है ना, क्योंकि ये जो वाइटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स है ना, ये फेशियल्स के अंदर एड किए जाते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक 2-in-1 फार्मूला है जिसे आप नाइट क्रीम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपको रिजल्ट देने वाले है ना वो बहुत हाई लेवल के देने वाले हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसे मर्द हसरात खवातीन हर कोई इस्तेमाल कर सकता है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके कोई भी अंदर साइड इफेक्ट्स नहीं है, आप बेफिक्र होकर लगाइए, आपको मिलेगी ऐसी खूबसूरती जो कि आप हमेशा से हासिल करना चाहते थे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि आपको रिजल्ट देने वाली है जनाब सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से। तो सिर्फ और सिर्फ 2 रातों में अगर आप हसीन बनना चाहते हैं, खूबसूरत बनना चाहते हैं, खूबसूरती को वेलकम करना चाहते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप परचेज करने जाएं तो इसके ऊपर जो है ना एक डॉक्टर खातून का फोटो है, तो ये देखकर ना जरा आप पहचान लीजिएगा कि हाँ जी हम बिल्कुल सही प्रोडक्ट परचेज करें। क्योंकि कई मरतबा हम जब दुकानदार की जानिब जाते हैं उसे मालूम करते हैं कि भाई फलां प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है, तो वो आगे से यही कहता है, अगर उसके पास नहीं होता तो वो कोई भी दूसरा सा प्रोडक्ट थमा देता है, कहता है ये उससे ज्यादा अच्छा है, ले जाइए। इन चीजों में आप इन बातों में मत आइएगा, आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम नाम लेकर तलब कीजिएगा। उसके पास नहीं है तो उसको आप नंबर दीजिए जो आपको प्रोग्राम में बताया जा रहा है, बोलिए भाईजान ये नंबर डायल कीजिए और अपनी दुकान पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराइए। आप जब अवेलेबल करा लेंगे ना उसके बाद हम आकर आपसे परचेज कर जाएंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बहुत ज्यादा वाले फायदे जो पूरे प्रोग्राम में आपको बता दिए होंगे, पूरे प्रोग्राम में आप लोगों के साथ बातें होंगी जनाब, क्योंकि आपका हमारा साथ पूरी पूरी 3 बजे तक है। आप जरा हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिएगा और मुझे बताइए कहां से आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा है वो भी जरा आप लोगों से दोबारा रिपीट करते हैं। तो आज का जो मेरा आप लोगों से सवाल है वो बिल्कुल ये है कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सा जानवर है जो काले रंग का दूध देता है, यानी कि उसका जो दूध है उसके दूध के कलर का ब्लैक है, दूध का जो कलर है वो ब्लैक है। जी बिल्कुल, तो जल्दी जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, आप मुझे 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं। तो जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर हैं वो ज्यादा से ज्यादा ऐसा कीजिए हमारी पोस्ट को जरा लाइक और शेयर रखा करें ताकि बहुत ज्यादा वाले लोगों को हम बता सके कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम मार्केट में अवेलेबल है। जी तो हमारी पोस्ट पर आप लोग मौजूद हैं, आपके फीडबैक्स हैं और आप क्या कह रहे हैं, आपके मैसेजेस की जानिब आ ही जाते हैं। अच्छा, गुलाम फरीद बलोच हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं क्या हाल है जी, तबीयत ठीक है आपकी और सारे लोग ठीक ठाक हैं और आपका प्रोग्राम ब्यूटीफुल है जनाब, थैंक यू वेरी मच। और अनवर भाई आपने टॉपिक का जवाब तो दिया ही नहीं है, सिर्फ टॉपिक लिखा है, तो टॉपिक आई थिंक आपने अभी सुन लिया होगा, तो उसका जवाब बताएं। और मोहम्मद जमाने तो वखरा ही जवाब दे दिया, कहते हैं टॉपिक का जवाब है भैंस, भैंस तो भाई व्हाइट दूध देती है ना जो हम सारे लोग पीते हैं, तो वो कहां से काला दूध स्टार्ट हो चुकी है। और फरवा कहती है टॉपिक जादू वाली बकरी या फिर भैंस, अब ये तो पता नहीं कहां ही पहुंच गई है। वापस आ जाए मैडम साहिबा। और स्मार्टू गोपांग हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं मैं भी आ गया इस स्टाइलिश आरजे कंबर सिटी से आपका शो सुन रहा हूँ, वेरी नाइस वॉइस, प्लीज प्ले सॉन्ग। ओके जी, आपका गाना भी लगाते हैं। और सिकंदर हमारे साथ है, सिकायल सिकंदर अली जकरानी जिले कश्मोर खां, वालेकुम अस्सलाम, कि आयो अदी भेण प्रोग्राम जबरदस्त हले पयो, थैंक यू वेरी मच प्यारा, तो मोहब्बतवान प्रोग्राम के पसंद कंदा आयो।
انور بھا کہتے ہیں شکر الحمدللہ ماں ٹھیک ٹھاک آیا رب پاک اواں کے رب پاک اواں کے سڑی عمر اڑو ہی رکھے آمین آمین آمین اچھا فہیم بھائی کہتے ہیں دادا کالے رنگ کا جانور ہوتا ہے کالا دودھ نہیں ہوتا ہوتا ہے بھائی ہوتا ہے تبھی تو پوچھا ہے اور کشور بھائی کہتے ہیں ارے بابا ہاں ہاں صحیح صحیح ہاں گال سمجھ میں آئی پھر یہاں تھوڑی گھٹ آئی سمجھ میں وہ ہمارا کبھی کبھی صابن سلو ہو جاتا ہے اچھا محمد راشد امان کہتے ہیں السلام علیکم سسٹر سدرا ہمیشہ کی طرح پروگرام اچھا جا رہا ہے خوش رہیں آمین سلام سب لسنرز کو وعلیکم السلام جی سب کی جانب سے یاسین کھنڈ کہتے ہیں آپ کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں جی آپ بتائیں کیسے یہاں پر میں تو ذرا باتوں کو بریک لگاتی ہوں میرے پاس ایک آپ لوگوں کو سنانے کے لیے گانا ہے مست مست سا گانا تو آئیے ذرا اس پیارے پیارے سے گانے کو ہم انجوائے کرتے ہیں آج کل یہ ذرا انجام ہو چکی ہے چیز کہ آپ لوگ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر رہے ہیں تو بجائیے اپنی قریبی جنرل اسٹور سے معلومات لیجیے ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کیجیے اور ڈی اسکن بیوٹی کریم اپلائی کرنا شروع کیجیے چاہے آپ مرد حضرات ہیں چاہے آپ خواتین ہیں ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ کی خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے

ओके जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके मैसेजेस ही देख रही थी, आपके फीडबैक्स ही, क्या बात है क्या बात है, आप लोगों के मैसेजेस है। और साथ साथ यहाँ पर अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो भैया आपको वेलकम कहा जाता है। बाकी जो लोग हमें साइलेंट हो गए सुन रहे हैं वो भी जनाब अपने होने का एहसास दिला दिया करें। हाँ जी, खामोशियां तोड़ लीजिए और बताइए आप कहाँ से मुझे सुन रहे हैं। क्या आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, ये भी बताइएगा। और मुझे बताइए वो कौन सा जानवर है जिसका दूध जो है वो काले रंग का होता है। हाँ जी,

भाई क्या बात है, गाना वाकई बहुत अच्छा है, गाना एंजॉय करेंगे और साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जी। गुड आफ्टरनून, हाय सिद्रा, आप कैसी हैं? योर शो इज वेरी वेरी नाइस, दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची। अल्ताफ आपको वेलकम कहते हैं और ये हमारे साथ कहते हैं सिद्रा जी प्लीज सॉन्ग लगाइएगा तो मुझो सनमा ही मा तुझो सनमा या। दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची। ओके डन। अच्छा ये लिखते हैं कैसी हो सिद्रा मुस्कान जी, खालिद सुमरो फ्रॉम मेहरापुर, मैं आपका प्रोग्राम रोजाना सुनता हूँ, वेरी नाइस और आपके बोलने का अंदाज बड़ा अच्छा है, और सॉन्ग सुना है ममताज मोलाई का।

हाल है सुमरो, आपको वेलकम कहते पहली मरतबा आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, सो बहुत शुक्रिया। डी स्किन ब्यूटी क्रीम मेहरापुर में मिल रही है, तो जाइए परचेज कीजिए, इस्तेमाल कीजिएगा। और शहर गुलाब लगारी गोट बाशम खान रिंद से शायर गाजी खान रिंद है, फैजान अली रिंद, शहजाद अली रिंद बाजी आवाज में। ओके जी भाई, बहुत शुक्रिया। और क्या कहते हैं आगे, फोजिया का गाना प्ले कीजिए। ओके आई विल ट्राई। और चाचा खाले चुनी जो हमारे साथ कहते बेटा सिडो सॉन्ग की रिक्वेस्ट है। ओके मां चाचा तांजो गानो हलाइंदम तापानी सीट ते वेही रहो। और गो टू ममन तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू हमारे साथ कहते तवां जो शो वेरी नाइस आए, सलाम तवां के। आई वालेकुम अस्सलाम तवां के, यो हाल अहवाल। डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कई कोन है।

जी हार सिंगार भी कयो पर गड़ गड़ डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल भी कयो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर से अञा ताईं अवेलेबल कोन थी आहे त वञो बाबा पुछी अचो मालूमात वठो नथी मिले त पोइ तव्हांखे छा करणो आहे जेके नंबर तव्हांखे ॿुधाया आहिनि उन नंबर ते तव्हां हिकु दफ़ो कॉल या वरी मैसेज करे वठो उन्हनि खे चओ अदा भाऊ असांजे ॻोठ में कोन थी मिलेव डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल न कराईंदा त असां इस्तेमाल कीअं कंदासीं सो उन्हनि खे चओ अवेलेबल करायो ऐं असां इस्तेमाल कयूं सुहिणा सुहिणा थी वञो ऐं असांजी ख़ूबसूरती सफ़ा नेक्स्ट लेवल ते हली वञे सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां सभिनी माण्हुनि जे लाइ आहे यानी कि तव्हां मर्द हज़रात आहियो ख़वातीन आहियो हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करे सघे

अच्छा जी, गाना तो सुनेंगे, साथ साथ आप क्या कह रही हैं थोड़े से मैसेजेस भी पढ़ लेते, क्योंकि यहाँ पर फिर बहुत ज्यादा हो जाते तो फिर मसला हो जाता है। दर्द दिल कहती है कि कुछ दिन छोड़ नहीं सुना, कुछ मसरूफियात थी, मगर चंदा भूली नहीं, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, जब शो का टाइम होता था तो मिस यू। ओके जाना, बहुत शुक्रिया, वैसे हमने भी आपको बहुत मिस किया। हिदायतुल्लाह कहते हैं कि जिंदगी चैन से गुजर जाए अगर वो शख्स जहन से उतर जाए। आए हाय हाय। अच्छा किशोर भाई, हिकड़ो सिंह तस या बस सिंह तस भी नहीं बुधायो। अच्छा सिकंदर अली कहते हैं शुक्रिया ऑल ग्रेट लाइफ वालों को। ओके दी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइएगा। यासीन कहते हैं शो वेरी नाइस वेरी ब्यूटीफुल थैंक यू। और नसीम गुलाम दीन भाई हमारे साथ कहते हैं जब वक्त खराब चल रहा होता है तो पीछे से हंसने वाली आवाज जानी पहचानी लगती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और कहते हैं विलेज अली बख्श जखड़ो नूरियाबाद से नसीम जखड़ो भाई आपको वेलकम कहा जाता है, बहुत शुक्रिया। दर्द दिल लिखती है कि उलझी हुई सी जिंदगी थके हुए से हम, थोड़ी सी आपसे गुफ्तगु और सारे मसले हल। अल्लाह मनाइए। अच्छा नसीम भाई लिखते हैं कि डी स्किन जिसने भी लगाई उसको नजर तो पक्की लगेगी। अरे भाई क्यों लगेगी नजर, ये बोलकर आप लोगों को रोकें तो नहीं कि वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ना लगाए, क्योंकि कुछ लोगों की ये ऐसी आदत होती है, मैंने देखा है उनको बड़ी ये चीज के ऊपर बिलीव होता है कि भाई बड़ी तेजी से नजर लग जाती है, लगती है नजर, लेकिन ऐसा है कि आप अपनी खूबसूरती का ख्याल तो रखना नहीं छोड़ेंगे ना, तो खूबसूरती का ख्याल रखिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए।

को लाइक और शेयर कीजिए और मुझे बताइए जी स्किन ब्यूटी क्रीम कहाँ कहाँ पर अवेलेबल अभी तक नहीं हुई, ताकि हम अवेलेबल करा सके और आपके लिए भी आसानी हो जाए कि भाई हमें भी दिल जाए हो कि आप लोग जी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर फरवा कहती है, यहाँ पे अर्ज किया है, हाथों की लकीरों पर मत जाए गालिब, नसीब तो उनके भी अच्छे होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। वाह वाह वाह वाह। अच्छा अली मोहम्मद भाई हमारा शो सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। इकबाल लाशारी विलेज सोनो खान लाशारी मीरपुर खास से हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं जी, आपको भी वेलकम कहा जाता है, आपने टॉपिक का जवाब दिया है जबरदस्त। और यासीन खंड आपको बिल्कुल गाना सुनाते हैं, आप हमारे प्रोग्राम पे जरा बने रहिएगा। अखलाक भाई हमारे प्रोग्राम में आ चुके, कहते नाइस शो, थैंक यू। नसीम भाई कहते हैं, हम पहली बार ऐसा जानवर सुन रहे हैं जिसका दूध काला है, क्या हम दूध पी सकते हैं? नहीं नहीं, आप उसका दूध नहीं पी सकते आप सिर्फ भैंस का दूध पीजिए, ठीक है? और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए। अच्छा यहाँ पर टाइम देखा तो टाइम हुआ है जी, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होंगी और साथ में न्यूज ब्रेक भी होने वाली है, तो आप कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, क्योंकि आपका हमारे साथ प्रोग्राम में पूरे पूरे 3 बजे तक का है, तो सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते रहिए और खूबसूरत होते रहिए।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन
1: न्यूज। खाद खुराक वाली शयूं भी महंगी थी वही लगातार पंजन ये पेट्रोल महंगो थे बाद फी लीटर 375 रुपया 82 पैसा थी वो जैसे तो डीजल भी 403 रुपया 32 पैसा फी लीटर मुकरर। ट्रांसपोर्टर्स भी पेट्रोल महंगो थे जवाब जनाईंदे भाड़न में घाटे ट्रोड वाद कर छी खाद खुराक वाली शय अग भी वी वाया शहरी सख्त परेशान सखर में शहरी इतिहाद जो एहतजाज अलामती जनाजो भी कढ़ियों वो।
2: गश्त शुरू करे छो बाबुल मंदिर के अहम बेट मेवर ते जी कब्जे की दावा जमनी फौज है मुखा बाबुल मंदिर में हुसैन के थाकन से बमबारी कई है जै दौरान हुसैन जो वो नुकसान हो।
0: आप सुन रहे थे जीए
3: पुरानी गाड़ी विकणण चाहियो था तो अचो।

0: कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी बहरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-1800-003।
2: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 0300-3105-109-0300-3105-109।
1: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-1800-003।
3: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो। जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ, तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
0: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई
0: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601001
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
6: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 03013992836
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सखरन मेहरापुर मातली 92 नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंडी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में यहां पर आप लोगों के साथ बातें हो रही है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को बता रही हूं। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेशक जी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में इन हो चुका है जिसका इस्तेमाल करने के बाद आप यकीन जाने बड़े ही खुश हो जाएंगे। वैसे भी कहते हैं ना, सही वाले प्रोडक्ट आपको बहुत ही कम लोग बताते हैं, तो सही वाला प्रोडक्ट जब आपकी सिद्रा आपको बता रही है तो उसके ऊपर अमल कीजिए, इस्तेमाल कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि वाकई कितना अच्छा प्रोडक्ट है और सिद्रा बाजी जो भी बताती है बिल्कुल सही बताती है। ओके जी, तो चाहे आप किसी भी सिटी से हमारा शो सुन रहे हैं, किसी भी गोड से आपका ताल्लुक है, किसी भी जगह से आप हमारा शो सुन रहे हैं, आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल सी आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। इसी के साथ साथ हम प्रोग्राम के दूसरे घंटे में आ चुके हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगी जिन लोगों ने अभी अभी प्रोग्राम स्टार्ट किया है सुनना, तो उनको भी वेलकम हो गया। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों से सवाल पूछ लिया है कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सा जानवर है जिसका दूध जो है वो काले रंग का होता है, ब्लैक कलर का होता है। बिल्कुल जी, और जल्दी से अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें 8881 और फेसबुक पर ज्वाइन करने वाले हैं, तो जल्दी से हमारे पोस्ट पर आइए, हमारी पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कीजिए और बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे खूबसूरत से प्रोग्राम का खूबसूरत से लिसनर्स हिस्सा भी बनते जा रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपको मैं नंबर्स बता दी उनके ऊपर रब्ता आप लोगों का बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कई मरतबा जब मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि भाई जान बताएं जरा आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही या फिर नहीं, तो आगे से मुझे ये जो लोग कहते हैं ना कि बाजी असां वटि त कोन थी मिले, अगर तव्हां वटि कोन थी मिले त तव्हांखे जो हेॾी टाइम खां वठी मां नंबर ॿुधाईंदी अचां थी, त नंबर ॿुधाइण जो जेको मक़सदु हूंदो आहे इहो ई हूंदो आहे त तव्हां बाबा हुन नंबर ते राबितो करे वठो, ऐं नंबर ते राबितो करण खां फौरन बाद ई तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराई वेंदी। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हां बि चाहियो था त बाबा असांजे करीबी जनरल स्टोर ते ॻोठ में अवेलेबल हुजे, त पोइ तव्हां छा कंदा, डायल कंदा 03 12 50 25 907 बुड़ी 312 पंजाह पंजवीह 970 ऐं ॿियो नंबर आहे 03 27 38 43 09 बुड़ी 332 73 84 309 ही नंबर आ जेको तव्हां डायल करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे अवेलेबल कराए सघो था। डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां अगरि तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश भी मिली रहियो आहे, तो फेस वॉश अञा थोरी थोरी जॻहियुनि ते अवेलेबल न आहे थियो, त जॾहिं फुल सफ़ा अवेलेबल थींदो पोइ फेस वॉश जे बारे में बि तव्हां सां ढेर सारियूं ॻाल्हियूं थींदियूं। पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम जॾहिं हाणे हर जॻह ते मिली रही आहे, डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल थी वई आहे, त डी स्किन ब्यूटी क्रीम मां तव्हांखे फ़ाइदो वठणु घुरिजे। मां त बिल्कुलु इहो चवंदा आहियां डी स्किन ब्यूटी क्रीम मां फ़ाइदो वठो बाबा, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजी ख़ूबसूरती जे लाइ सफ़ा घणी फ़ाइदेमंद आहे। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करने वाले लोग बड़े ही अच्छा हमें रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं, अगर आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो जल्दी से इस्तेमाल कीजिए। और खूबसूरती हर किसी की ख्वाहिश है, लेकिन खूबसूरती के साथ अपनी जिल्द की जो है ना वो केयर और हिफाजत भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। अगर आप अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी केयर रूटीन में जनाब एक खूबसूरत सा इजाफा करना चाहते हैं तो आपके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, और ये जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ऐसा जो कि आप महंगे महंगे फेशियल कराने के बाद ही हासिल करते हैं। तो आपका एक तो टाइम भी बच जाएगा, दूसरा आपके पैसे भी बच जाएंगे, बस मुनासिब सी कीमतों में आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, बस आप जाइए परचेज कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप परचेज करने जाएं तो निशानी के तौर पर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम की जो डब्बी है जब आप परचेज करेंगे तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के डब्बी के ऊपर एक डॉक्टर आंटी का फोटो है, आंटी तो नहीं खैर से ये खातून है, लड़की अच्छी खासी, तो उसका फोटो आपको मिल जाएगा। और जॾहिं तव्हां डॉक्टर माई जो फोटो ॾिसो त तव्हां समझी वञो बाबा ओ या अथव डी स्किन ब्यूटी क्रीम। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका स्किन जा डॉक्टर हूंदा आहिनि उन्हनि बिल्कुलु तयार कई आहे, ऐं मेडिकेटेड फार्मूलो आहे, सो तव्हां बेफिक्र थी करे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सघो था। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे न सिर्फ़ खूबसूरती ॾींदी बल्कि तव्हांजी ख़ूबसूरती में चार चंड बि लॻाए छॾींदी. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो, पंहिंजी ख़ूबसूरती जी हिफ़ाज़त कयो ऐं सोणा सोणा थी वञो. तो जल्दी जल्दी से इस्तेमालु कीजिए. अगरि आप इस्तेमालु करे रहे हैं तो मुझे बताइएगा, क्योंकि भई ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि मेरे कितने सारे लिसनर्स हैं जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमालु करते हैं. तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए. 888-21 और फेसबुक पर आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं. फेसबुक वाली जो ऑडियंस है वो जरा पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए. आज का जो सवाल है ना, वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप लोगों को उसने थोड़ा सा हिला के रख दिया है. खैर कोई बात नहीं, कुछ लोगों ने एक ने ही सही जवाब बताया, मुझे जितना मुझे मतलब नजर आया है. तो एक इंसान ने उसका सही जवाब बताया और वो आप जरा देखिए कि किसने सही जवाब बताया है. और नसीम भाई कहते हैं कि मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब है ओके. और जी नूरिया बाज से आप हमारा शो सुन रहे हैं. नसीम भाई आपको वेलकम कहा जाता है. और उसके अलावा शमन का गाना बिल्कुल जियो करे सलायूं था शमन जो गानो. यासीन खंड था वेरो बस पांजी सीट थे. अच्छा अखलाक भाई तव्हां बि टॉपिक जो जवाबु ॾिनो आहे, सैया बाबा सैया सैया. हाणे मां वधीक कुझु न चवंदा न त तव्हां ख़बर पइजी वेंदी त जवाबु छा आहे. अच्छा उनके अलावा चाचा खालिद कहते हैं मुझे भी ये ओहो करना सिखाए ना, बस जैसे मैं करती हूँ ना वैसे आप किया करें साथ साथ, तो आपको आ जाएगा बोल. ओके जी, तो मैंने आज आप लोगों से सवाल ही पूछा कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सा जानवर है जिसका दूध जो है वो काले रंग का होता है. ठीक है जी, तो जल्दी से बताइए. और फहीम भाई कहते हैं कि दादा डी स्किन ब्यूटी क्रीम. अच्छा हाँ चलिए ठीक है, डी स्किन का जो फेस वॉश है ना वो भी आप परचेज कर सकते हैं. तो बस आप जाइएगा और परचेज कीजिएगा. सुमाटू कहते हैं सलाम टू अशाद कॉलोनी कंबर खां एजाज हुसैन गोपांग इनायतुल्ला गोपांग गुल हसन गोपांग किफ़ायतुल्ला गोपांग हुसैन अली गोपांग रहमान अली गोपांग जे नाले. अच्छा उन खां अलावा तव्हां गानो चयो आहे, बिल्कुलु तव्हांजो गानो हलाईंदो आहे, तव्हां बसि थोरो सबर कजो, सफ़ा थोरो पित कड़ो. नसीम भाई कहते हैं कि हम नूरियाबाद से आपका शो. अच्छा ठीक है. वेट करते हैं और आगे. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया. ऐसे ही बस मोहब्बतों के साथ हमारा प्रोग्राम सुना करें और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का भी इस्तेमाल किया करें, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम नूरियाबाद में मिलनी चाहिए. और नूरियाबाद के जितने भी लोग हैं वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करें तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, खूबसूरतियाँ हासिल कीजिए और हसीन हसीन रहिए. यासीन कहते हैं कि मैं डी स्किन का शॉप लगाऊंगा. जी जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा काम है, आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा, लाजमी लगाइएगा.
1: दुश्मन करे मार दुश्मन करे मार.
0: अच्छा मामदास मलिक जी गाने जी फरमाइश कीजिए, ये गानों के डेडिकेट आए बशीर बलोच हमारे साथ ही. वालेकुम अस्सलाम डियर, आप कैसी हैं? आपका शो मैं सुन रहा हूँ कराची कायदाबाद से. बशीर अहमद बलोच एंड आरजे नूर मोहम्मद को सलाम. ओके जी जी किशोर भावा, हाणे तव्हांजी ॻाल्हि समझी वयसि, बिल्कुल इहो ई जवाब आहे. बड़े चलाको कसम से.

हाँ जी, इन ॻाल्हि में ॿिन्ही जी भलाई आहे जॾहिं तव्हां टी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा त ॿिन्ही जी भलाई हूंदी. सम्झो था तव्हांखे ख़ूबसूरती मिलंदी एॾी ख़ूबसूरती जेका तव्हां हमेशा हासिल करणु चाहियो पिया. अच्छा दर्दी दिलि, थैंक यू सो मच स्वीटी, आप हमारे साथ हैं. अब्दुल जी कैसर हमारे साथ हैं. वालेकुम अस्सलाम जी, आपको खुश आमदीद कहा जाता है मोहब्बतों के साथ. और अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं. अब्दुल रजाक कहते हैं प्रोग्राम बुधू पया आदि सिदरा, थैंक यू वेरी मच सोना भा. जी जी अखलाक भाई, तव्हां ते मयार ई न, तव्हां पी बि सघो था.

भाई ये हाँ 1980 वाला जो ट्रेंड चल रहा है इसने भी थोड़ा सा दिमाग खराब कर दिया है। खैर एंजॉय करने दो लोगों को। अच्छा एडी मिलानो हमारे साथ है खैर पर मीरा से वेरी नाइस प्रोग्राम सलाम आप एंड सबको थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई आपको वेलकम के

हां जी बाबा ये न कयो ये न कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो दुश्मनन के साड़न चायो था तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सोना थी करे पोता पाने दुश्मनन के साड़ाई सगो था बिल्कुल ही दुश्मनन के साड़ायो ए डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो नायला खान हमारे साथ की थी हाय सिद्रा आपी मैं आपका शो मीरपुर खास से देख रही हूं शो बहुत अच्छा है और आपकी आवाज भी थैंक यू वेरी मच नायला आप हमारे साथ है नायला मीरपुर खास में आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल जाएगी तो आप जाइएगा परचेज कीजिएगा अच्छा रमजान भाई में सुन रहे हैं सलाम जी वालेकुम अस्सलाम रमजान भाई आपकी बहना ठीक है आप बताएं कैसे हैं ठीक ठाक हैं खुशबाश हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में परचेज करने के बारे में क्या सोचा या अन्य तीन था मुझे गिफ्ट जी आसरे में आयो मुझे गिफ्ट जी आसरे में नवे हो बाबा वनो पान वटी अचो

अच्छा दर्दी दिल वो तो ठीक है, आपने टॉपिक का जवाब दिया, लेकिन ये तो बताएं आपने किसकी कॉपी करी है। चलिए जी, थैंक यू, आप हमारे साथ हैं। और ये किम यूना हमारे साथ है। किम यूना आ चुकी, कहती हेलो क्यूटी, हाउ आर यू, वेलकम मी, वेलकम, कहती जी आपको दिल की अतांग गहराइयों से। कहती है मैं कोरिया से हूँ और मुझे उर्दू आती है, अब बताओ मैं कौन, आप हमारी बोल दो, बोल दो। टूना फिश हैं आप हमारी।

वाह साईं वाह हकीकत आहे न ॻाल्हि में, को शक कोन्हे को, पर जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा पोइ त साईं वाह वाह थी वेंदी, तव्हां एॾा ख़ूबसूरत थी वेंदा तव्हांजे चहिरे ते जेके डार्क सर्कल्स आहिनि, रिंकल्स आहिनि, एक्नी आहिनि या एक्नी जा निशानात आहिनि, उहे सभु चीज़ूं ख़तमु थींदी, तव्हांजी स्किन क्लियर थी वेंदी, बेदाग थी वेंदी, सोणी थी वेंदी ऐं तव्हां चमकंदा वधंदा। सो ग्लो करणु चाहियो था त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु लाज़मी कजो। ओके जी, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। जी जी, सबके गाने लगाएंगे, टाइम से जरा इंतजार कीजिए थोड़ा सा। वहीं भाई कहते हैं, भाओ मुझको लगता है हाँ तुम्हारा दसो चमन भी बतो तो कहो चमन वरतो। किशोर भाई कहते हैं कि मैं भी पैसे बचाने के चक्कर में ले नहीं रहा, कोई लेकर दे तो पैसे बच जाएंगे, मैं नेक्स्ट टाइम जरूर लूंगा पंखा प्रॉमिस। अच्छा, पंखा प्रॉमिस कर चुके हैं, अब तो मुझे लग रहा है कि गिफ्ट करनी ही पड़ेगी आपको। वैसे मैं किस किस को गिफ्ट करूंगी, एक को करूंगी तो दूसरा आ जाएगा। तो फिर ऐसा है कि पैसे आप इतने ज्यादा मत बचाइए, कोन तान पैसन में बंगलो ठा रहा तुम वनो ऐसी स्किन ब्यूटी क्रीम वी जो सही है।

अच्छा मूंखे लॻंदो आहे त जेकी माण्हू पैसो बचाइण जी कोशिश कंदा आहिनि ऐं कुझु पंहिंजे लाइ ख़र्च न कंदा आहिनि पाण ते, मतिलबु उहे पैसो न लॻाईंदा, त मूंखे लॻंदो आहे उनजो जेको पैसो बचियल हूंदो आहे न उहो वरी कंहिं अहिड़ी चीज़ ते लॻी वेंदा जंहिंजो उन तसवर बि न कयो हूंदो आहे। सो तव्हां थोरो कोशिश कयो, पाण ते थोरो ख़र्च कयो बाबा, खाओ पीओ सुठो ऐं दी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु बि कयो, जे सोणा सोणा बि ॾेखारिजो। और ये आरजे जिमी बलोच हमारे साथ, आरजे जिमी बलोच, वालेकुम असलाम जी, आपको वेलकम कहते हैं।

अच्छा किम यूना कहती है कि मेरे बिना तो शो फीका फीका लगता होगा। जी जी बिल्कुल आपने सही फरमाया मैडम जी। सनाला फलपोटर हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा समाटो गोपां कहते सिद्रा मेरी कमेंट्स। हाँ जी तमाम जो कमेंट्स कहते हिक अगे आए हसीन बियो वरी वारन जो चगू जेके रुखसारन ते खेचल कन थियो ओए तुंजी सुह के वेतर चार चंड लगाए छडिन थियो। वाह वाह वाह वाह नाइस नाइस। अच्छा सनालो फलपोटो तव्हां खे असांजो प्रोग्राम वणी पियो, सो थैंक यू तव्हांजो मोहबतूं आहे। अब्दुल गफ़ार भाई बि असां सां गॾु मौजूदु आहे लाजवाब शो। थैंक यू जी। तव्हांजे पाड़े में बि ॾिसो वाए सो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिलंदी हूंदव, सो वञो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो। अच्छा हिदायतुल्ला कहते हैं कारी बकरी अच्छो खीर त सुना था लेकिन काला दूध आज पहली दफा सुना है। अला जाई उदा कसम तो ये ता न बदो हो आईली दिसो त आज मार ही सोचा भाई त माई 12 नो सवाल थी खणी वना पर दिसो त मुझे लिसनर्स के त खबर ही कोने के बीचे जी। चलो हाँ तक खबर पेजी पर तक डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में भी खबर है, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इग्नोर न कयो बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो। और नायला कहती है सिद्रा मेरी अम्मी आपका शो सुन रही है और आपको सलाम दे रही है, बहुत शुक्रिया आपकी अम्मी जान को वेलकम कहते हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं, थैंक यू। हेलो जी सो गानो तमाम एंजॉय कयो गाने का फौरन बाद ही असा वणू था बाबा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हुना उनका पर जल्दी मोटी तमा दे इना तमा करी ना मंजू ते बैठा हो जो मा ओही वणी ओही मोटा मथी, सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कयो हाणी तांजी खूबसूरती तांजी हथन में अथव, दिसां थी तां करे तां पानी खूबसूरती हासिल कयो, वणो ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी छो।

0: It's 2:30 p.m.
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिला आसिम हुसैन आराई 03073592120
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूहु वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 बजे ताईं मरीज

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
1: बैंक इस्लामी लाया, पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 03013992836।
7: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

वाह साईं वाह वाह साईं वाह ओया गाल थव बिल्कुल हाँ जी भाई वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आपको कहते हैं वेलकम इन खुशामदीद। यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद हैं जी, तो आप अपने होने का एहसास दिलाते जा रहे हैं और हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो आप मुझे 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद हैं वो जी लाड़काना FM 88.8 के पेज के ऊपर आकर हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जरा पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें। और इसी के साथ साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके बारे में तो पूरे प्रोग्राम में आप लोगों को बताते रहते हैं। कोई जरा सी भी अगर कंफ्यूजन आपके जहन में हो तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में मैं आप लोगों को सारी चीजें बता देती हूँ ताकि आप अच्छे से जान ले, पहचान ले और उसके बाद इस्तेमाल करना शुरू कीजिए।

ओके सो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली 92 नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपकी सिद्राव के साथ मौजूद है। चलिए जी हम प्रोग्राम के लास्ट लिंक में मुखातिब हो चुके हैं, तो यहाँ पर जल्दी से आप जरा टॉपिक को फॉलो कीजिए। तो सवाल का जवाब देने के लिए आप हमें जल्दी से ज्वाइन कीजिए। अच्छा, तो अगर आप डी एस क्रीम के बारे में जानना चाहते हैं, जिन लोगों ने अभी अभी हमारा प्रोग्राम सुनाया स्टार्ट किया है, तो ऐसा कहते हैं ना हमेशा कि भी खूबसूरती और खूबसूरत होना ये हर किसी की ख्वाहिश होती है। यानी कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये दिल करता होगा कि भाई हम भी खूबसूरत दिखाई दे, हमारी खूबसूरती भी नजर आनी चाहिए लोगों को। आपके चेहरे पर जो ये निशानात आ चुके होते हैं, रिंकल्स आ चुके होते हैं, वक्त से पहले आप अपनी स्किन को देखते हैं तो आपको लगता है कि भाई हमारी स्किन जो है काफी खराब हो चुकी है, और इसका कोई हल बताएं, इसका कोई सलूशन बताएं कि हम कैसे अपनी स्किन की हिफाजत कर सके। तो बिल्कुल जी, आपको बताया जाता है कि खूबसूरत और फ्रेश लुक के लिए सिर्फ मेकअप ही काफी नहीं होता, बल्कि दिन का आगाज एक अच्छे से स्किन के रूटीन के साथ करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमारे अगर आप देखें तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में अगर हम आपको बताते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें ऐड की गई हैं जिससे आपकी ना सिर्फ खूबसूरती बढ़ती बल्कि आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होती है। तो अक्सर आपने उन प्रोडक्ट का जो है ना वो सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जिन प्रोडक्ट्स में आप लोगों को खूबसूरती भी मिले और आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहे, क्योंकि मार्केट ऐसा भरा पड़ा है बहुत सारे प्रोडक्ट से जो कि भाई आप लोगों की स्किन के लिए दावा तो करते हैं कि ये गोरा बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब आप उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ जाते हैं। अगर आप इन तमाम चीजों से बचना चाहते हैं, कोई सिंपल सा कोई प्यारा सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं जिसमें आपके पैसे भी ज्यादा ना लगे, टाइम भी ना लगे और आपको खूबसूरती भी प्रॉपर मिलती रहे, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए मौजूद है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये 2-in-1 फार्मूला है। जैसे कि आप जानते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं वो भाई इतना हसीन सा निखार हासिल कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई फेशियल करा के आए हैं, कोई महंगा सा फेशियल करा के आए हैं या फिर कोई महंगी सी आपने ट्रीटमेंट ली है स्किन की, लेकिन ये कमाल होगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम का, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर वाइटामिन ई बीड्स हैं और माइक्रो बीड्स हैं। ये दोनों जो चीजें ना, वाइटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स, ये तमाम महंगे सारे प्रोडक्ट के अंदर ऐड की जाती है, और पाकिस्तान में 2 से 3 प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर वाइटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स है। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करें तो बड़े खुश नसीब है, क्योंकि आपके पास भी मौजूद है एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपकी खूबसूरती को बढ़ाएगा, आपकी खूबसूरती की हिफाजत करेगा और आप हमेशा के लिए खूबसूरत, हसीन और प्यारे हो जाएंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि 2 रातों के इस्तेमाल से आपको बहुत अच्छा सा रिजल्ट दे रही है, और 2 दिनों में सिर्फ, बिल्कुल जी 2 दिनों में, आपने बिल्कुल सही सुना, 2 दिन अगर आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो आपको अच्छे खासे रिजल्ट मिल चुके होंगे। और मर्द हजरात, खवातीन, हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकता है, तो इस्तेमाल करते रहिए, अपनी खूबसूरती की हिफाजत कीजिए, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए, खूबसूरत हो जाइए और खूबसूरतियों को जरा वेलकम कीजिए।

हां जी भाई जान, इस बात में कोई शक नहीं, ॾाढो भलो गानो ॿुधो सी। फरमाइश हुई हिदायतुल आमदानी शायदि गाने जी फरमाइश कई हुई, बिल्कुलु ॿुधो सी। ऐं हीउ वारो सॉन्ग बि ॿुधंदासीं, फरवा फरमाइश कई हुई, फरवा फरमाइश कई हुई। ओके सो तव्हांजा कुझु फीडबैक्स आहिनि मोहम्मद समान भाई, कंहिं ते नाइस सॉन्ग भाई शमन, थैंक यू बुआ जी, इट्स ओके प्यारे भाई। अच्छा ये कहती है कि मैं निदड़ी हूँ रे, मैंने शो को और तुम्हें बहुत मिस किया रे, बहुत शुक्रिया रे, और आप वापस आ चुकी हैं तो आपको वेलकम कहते हैं रे।

फहीम भाई कहते हैं भाऊ असांखे कॾहिं गिफ्ट मिलंदी थोरो थोरो भला आसरो ॾियो मां आसरो न ॾींदी आहियां कंहिंखे बि तव्हां पाण वठो मां हमेशह तव्हांखे इहा ई चीज़ चई आहे और नसीम भाई कहते हैं कि काश आप नूरियाबाद पर आरज़े होती हमारी ख्वाहिश अल्लाह मां ज़िंदगी में कॾहिं नूरियाबाद कोन आई बस भाउ तव्हां मूंखे हिते ॿुधो या हुते ॿुधो ॻाल्हि साॻी आहे त मोहबतूं ऐं तव्हांजो नूरियाबाद में तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे बारे में मालूमात वठिजो मिले थी कोन अच्छा सो स्मार्टू गोपांग आपने टॉपिक का जवाब दिया है ठीक है जी बहुत बढ़िया प्रकाश कुमार हमारे साथ मौजूद है हेलो जी हेलो अनवर भाई आपने भी टॉपिक का जवाब दिया है बढ़िया हो गया जी परवा आपने भी टॉपिक का जवाब दिया है ठीक है किशोर भाई कहते हैं कि सब तुझे भाव वांगुर होशियार थोड़ी आए न बस मानू कदर नथा कन हाय ही अलग गाल है न कदर आए कदर कण वारन वट तांजो कदर आए एड़ी भी गाल कोने का आई चौदह जेके मानू 1980 में वनन पया हुनन के चौ थोड़ो होता संस्कार भी वठी अचन सही था चौ सही था जो संस्कार जरूरी है अच्छा मोहम्मद नूर गादी हमारे साथ है मेहड़ से आप हमारा शो सुन रहे हैं क्या बात है जनाब आपको वेलकम कहा जाता है और एहसन अली बुक्टी भाई हमें सुन रहे हैं एहसन भाई आपको भी खुशामदीद कहा जाता है मुजाहिद मलिक हमें सुन रहे हैं घोटकी से आप हमारे प्रोग्राम में शामिल रहे हैं तो आपको खुशामदीद कहा जाता है चाचा कहते हैं ठगियों त केतरा ठगियों ते केतरा डिया हलंदो बेटा उहाई गाल चाचा घुमी फिरी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लाजमी लगाइणी पवंदसि तो तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो जेके जेके अञा ताईं वेठा सोचनि था बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इलाही सारो फ़ाइदो तव्हांखे मिलंदो सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हणी ॾिसो पोइ ईअं न चओ त सिदरा भाजी असां तव्हांजी ॻाल्हि न मञीसीं जेका डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे न हर कंहिं इस्तेमालु करे सुहिणा थी विया बसि असांखे छॾे सो तव्हां बि वञो पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते उतां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे बारे में मालूमात वठो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे ईज़ीली मिली वेंदी न बि मिली थी त जेको नंबर तव्हांखे ॿुधायो आहे उन नंबर ते राबितो करे वठिजो सही आहे

ओके जी वजीर भाई हमारा शो सुन रहे हैं डिस्ट्रिक्ट ठट्टा से डॉक्टर वजीर अली भाई कहते नाइस शो थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई आपको वेलकम कहा जाता है सिकंदर है सालार सिकंदर आपको खुशामदीद कहा जाता है बहुत शुक्रिया और जी नजीर भाई कहते हैं विलेज मोहम्मद अली से डॉक्टर वजीर अली भाई आपको थैंक यू कहते हैं बहुत शुक्रिया के साथ और स्मार्टू कहते हैं सिदरा मुझे भाई मुखे लगे तो यो तांजो ख्वाब कदें भी पूरो न थी वेंदो छो त ये कदें थियणो ही न आहे अच्छा रसूलाबाद से अब्दुल सिंह चंबानी भाई वालेकुम अस्सलाम अदी कारे रंग जो खीर चलो तमा जवाब दिनो आ जे जो मुखे थोड़ो समझ में गाल कोन आई सो खैर

फ्रिकल्स आहिनि या निशानात आहिनि या एक्नी प्रॉब्लम आहे हर तरह सां तव्हांखे महफ़ूज़ रखंदी आहे। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु मर्द आहियो ख़वातीन आहियो हर कोई इस्तेमालु करे सघे थो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो फेस वॉश बि अवेलेबल आहे। अगरि तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथा लॻायो त तव्हां फेस वॉश ट्राए करे सघो था। मार्केट वञो, मालूमात वठो ऐं परचेज़ कयो।

जी जी भलो गानो आ, भलो गानो आ। अच्छा एम अली मोरो सिटी से हमारी साथी, वालेकुम अस्सलाम, सो स्वीट सिस्टर सिद्रा, एफएम की फूल और खुशबू, हमेशा बिखेरती रही कूंज, वहीद अली का सॉन्ग सुनाओ तेरी। अच्छा सही सही सही, हाँ तो खैर तुम गानो मत न हली सके, तो गानो पंज बजे वाले प्रोग्राम बुधूँ ठीक है, न तो सुबह बुधी वी। और हबीबुल्ला थेबू है सॉन्ग बुधाजो फोजिया सुमरो, अगते गानो लिखो है भाई हिकड़ो तो मुख्य मानो बुधाए जो गाने की फरमाइश न तो करे। हाँ किशोर भाई न कही है, बाकी तो हर कोई गाने की फरमाइश तो करे, एडी फरमाइशू न कदा कर मनड़ो मानू काड़ी काड़ी वन। अच्छा ये ऐसे शो हमारे साथ हैं खालिद आलम और मोहम्मद खान हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया बोथ ऑफ यू, आप दोनों को वेलकम कहते हैं। चाचा तमाम जो मां पढ़ो तो सही टॉपिक वारो कमेंट

बिल्कुल जी, खूबसूरती के मामले में कुछ लोग थोड़ा सा पीछे होते हैं, और उनको जब ये पूछा जाता है कि भाई आप खूबसूरती के मामले में पीछे थोड़ा सा क्यों है, तो उनको यानी कि कहते हुए मैंने यही देखा है कि वो हमेशा ये कहते हैं कि भाई हमें सही गाइड नहीं किया जाता, सही प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होता। अगर हम मार्केट जाते हैं तो हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट दुकानदार दे देते हैं जो हम इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन स्किन खराब हो जाती है। तो उस सूरत हाल को देखते हुए वो ये कहते हैं कि भाई हमने तो प्रोडक्ट इस्तेमाल ही नहीं करने। अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, कोई आपको नहीं बता रहा है, तो आप एक मरतबा मेरे कहने पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके देखिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके हर स्किन टाइप के लिए है, मेडिकेटेड फार्मूला है, और डॉक्टर्स जो होते हैं ना स्किन के, उन्होंने मिलकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार किया है। तो यानी कि ये चीज तो बिल्कुल आप भूल ही जाइए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने के बाद आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो सकती है। भाई हर तरह से आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देगी, हर तरह से आपकी स्किन का ख्याल रखेगी, और हर तरह से आपको प्यारा प्यारा खूबसूरत बना देगी। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम सारे लोगों के लिए है, बस आप जाइए परचेज कीजिए और इस्तेमाल करना शुरू कीजिए।

जी जी बिल्कुल, मैं ये गाना जरूर सुनूंगी जब सामने तुम आ जाते हो। वैसे ये वो तो नहीं जब तुम आ जाते हो सामने, या वरी ही को बियो हुंदो मुखे ये लगे तो, तो तो 80s जा गाना शायद मु थोड़ा बुधा है। अच्छा उन्होंने कहा बस सनावला फुल पोटो कहते हैं आपकी, अच्छा तमा शायरी लिखी आपके दीदार पर अगर मेरा अख्तियार होता, वल्ला ये रोज रोज होता बार बार होता। आई हाय आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाया बाबा रोज रोज बार बार ताकि मजो अची वेदो। अच्छा फहीम भाई कहते हैं

गानो भलो हुयो, वाइब सुठी हसे। ओके जी, हाजी नज़ीर हाजानो भाई सऊदी अरब से।

0: हमारा शो सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम भाईजान को वेलकम कहा जाता है। सालार सिकंदर कहते हैं कि एंड में टॉपिक के जवाब बताइएगा, बिल्कुल जी बताएंगे। थैंक यू आप हमारे साथ है। और नजीर भाई हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया भाईजान आपको वेलकम कहते हैं। नसीम भाई कहते हैं हमने भी दिया था, क्या दिया था आपने? और उनका अलावा अनवर भाई कहते मोकलाणी मोकलाइंदे अखिन में आया लुड़क, लबंती अलविदा जो नाम हो, दिल त चाहो पे भी रहो पर वक्त जो वो ही पैगाम हो। वाह वाह वाह वाह।
1: बुधो आहे मू साइडन में तू, बुधो आहे मू।
0: अच्छा हिदायतला कहते लगी थो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे काबिल, भली महबूब माणा कर ओ या ही गाल केस ताई माणा कंदा। हां नेठ त वठणी पवंदव डी स्किन ब्यूटी क्रीम।
1: बुधो आहे मू
0: नदड़ी कहती लगी तो चंपन जे काबिल, यह भी हकीकत है।
1: मुझो गालियो
0: कुटकी जे काबिल। जी जी अनवर भा तां जो ये बस मोहब्बतूं आहिनि, प्रोग्राम के चाहे मोहब्बत सां ॿुधंदा कयो। अच्छा फहीम भा तां फरमाइश हेड़ी कंदा न, छा कयूं असांखे आख़िर में हलाइणी पवंदी आहे। नज़ीर कोसो भा सांगी बलोचिस्तान का मुदे पयो मोहब्बतूं प्यारे भाजूं। और कहते हैं पैसे कमाने में वक्त लगता है मगर उससे खोने में कभी कभी एक गलत फैसला काफी होता है, और इसीलिए हर मौके को बहुत बड़ा फायदा दिखाइए। जरूरी नहीं कि उसे पकड़ लेना चाहिए, कभी बच्चा भी लेना चाहिए, कामयाबी होती है। अलाए छा हुयो कॾहिं कॾहिं तव्हांजी थोरी ॻाल्हि मूंखे सम्झ में घटि ईंदी आहे। ऐं हिन खां अलावा निधिड़ी कहती की आज गिफ्ट डे है क्या, सबको गिफ्ट चाहिए तुमसे क्यों भला, शीज़ा ने शॉप खोलाए क्या? अगर मां दुकान खोलियां त वाकई तव्हांखे गिफ्ट ॾियां, अला मुंहिंजी एॾी वॾी दिलि आहे पर दुकान कोन्हे न, सो तव्हां हाणे पंहिंजी वठो।

0: मुझो गालियों
1: गालियों नहीं गिलाऊं कंदी हुंदी तां ध्यान नहीं बदजो ठीक आ आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर तां तोफो नरी नो तर सपोर्ट द लास्ट मी गिलाऊं कंदी बाबा तो तां डी स्किन ब्यूटी क्रीम तोफो गयो पांजे प्रिय प्यारन के जी जी एतबार आ एतबार

अच्छा सो असांजे वञण जो टाइम थी वियो आहे, तव्हां खां मोकल वठंदासीं, इजाज़त खपे बसि हाणे तव्हांजी। ऐं सवाल जेको पुछो उन जो जवाब छा हुयो, इहो तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। जेको दरियाई घोड़ो हूंदो आहे न, उन जो जेको खीर हूंदो आहे उहो ब्लैक कलर जो हूंदो आहे। इन ते थोरी रिसर्च करे ॾिसूं था त इहो वाकई ब्लैक कलर जो आहे या माण्हुनि खे लॻंदो आहे, पर अगरि हा तव्हां ॾिसंदा त उन जो जेको खीर हूंदो आहे उहो ब्लैक कलर जो हूंदो आहे, दरियाई घोड़ो। ठीकु आहे। ऐं उन खां अलावा जेको आहे सो बसि वरी तव्हां सां मुलाकात मुंहिंजी थिए पई 5 बजे वारे प्रोग्राम में, सो पंहिंजो ओॾो सॼो ख़्यालु रखंदा। किथे का ग़लती थी हुजे त बाबा माज़रत कयूं था, जंहिंजो फीडबैक रहिजी वियो, को गानोड़ो शानोड़ो रहिजी वियो त माज़रत कयूं था। मोकिलाणी ना ही सिलसिला में सलामत, अलाह हाफ़िज़, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: It's 3 p.m. This line check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: दाल चढ़े थी, सब्जी ॾिसो चढ़े थी, गिहु चढ़े थो, अटो ॾिसो सोटी वीह रुपया 140 रुपया थी वियो. केरु ग़रीब माण्हू कान वठंदा?
4: पेट्रोल जे अघनि में ॻाटे ट्रोड़ वाध, शहरनि जी सप ख़तम करे छॾी. मुसाफ़िर गाॾियुनि जे भाड़नि में ॻाटे ट्रोड़ वाध बाद खाद खुराक वारियूं शयूं बि महांगी थी वियूं. लगातार पंजनि ॾींहनि पेट्रोल महांगो थियण बाद फी लीटर 375 रुपया 82 पैसा थी वियो, जॾहिं त डीज़ल बि 403 रुपया 32 पैसा फी लीटर विकामण लॻो. ट्रांसपोर्टर्स बि पेट्रोल महांगो थियण जो जवाब ॼाणाईंदे भाड़नि में ॻाटे ट्रोड़ वाध करे छॾी. खाद खुराक वारनि शयुनि जा अघ बि वधी विया. शहरी सख़्त परेशान. सखर में शहरी इतिहाद जो एहतजाज, अलामती जनाज़ो बि कढियो वियो.

0: विदो ओमान में अरब मुल्कनि सां सूमर ते थींदड़ इजलास में ओमान ऐं ईरान विच में मुआदे ते सहियूं थींदियूं। ईरानी सदर मसूद पिज़िकशान चयो आहे त अरब मुल्कनि जी सरज़मीन तां ईरान ते हमला थिया आहिनि। अमरीका खे पाबंदियूं नाकाम बंदीअ ख़तम करणु घुर्जे। इस्माइल बकाई चयो त आबनाओरम जो कंट्रोल ईरान वटि आहे। तेल क़ीमतुनि में वाध जो ज़िमेवार बि अमरीका आहे। सऊदी अरब, उर्दन ऐं जापान खे ईरान ख़िलाफ़ ठहराउ जी हिमायत करण ते नतीजा भोगणा पवंदा। ईरान जे क़ौमी सलामतीअ बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ीअ चयो आहे त मुतालबनि जी मञता ताईं अमरीका सां ॻाल्हियूं न थींदियूं। यमन जे हुसैन बाबल मंदब जो कंट्रोल संभालण बाद आलमी आबी रस्ते जी गश्त शुरू करे छॾी। बाबल मंदब जे आम बेटनि मेवनि ते बि कब्ज़े जी दावा यमनी फ़ौज चयो आहे त मुखा ऐं बाबल मंदब में हुसैन थाकनि ते बमबारी कई आहे, जंहिं दौरान हुसैन जो वॾो नुक़सान थियो आहे। इराक में तेल जी लाइन ते हमलनि बाद सऊदी अरब परॾेही वज़ीर फैसल बिन फरहान जो इराकी हमनसब सां फोन ते राब्तो। ॿतरफ़न लाॻापनि समेत ताज़ी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल। इराकी परॾेही वज़ारत मूजिबि ॿिन्ही अॻुवाननि खिते जे तब्दील थींदड़ सूरत हाल ते ॻाल्हियूं कयूं ऐं राब्तनि में रहण ते इतफ़ाक़ कयो।
1: नमाज़ पढ़ने गया, पीछे से बच्ची गुम हो गई। जब सलाम फेर के देखा तो पीछे थी नहीं, तो फिलहाल तो पीछे मिली है। कौन क्या करेगा, कोई कुछ भी नहीं करेगा। मैं गरीब हूँ ना, ऐसी मर जाऊंगा। कोई साथ भी नहीं देगा, ना शरीयत वाला, ना बगैर दाढ़ी वाला, ना मूंछों वाला वगैरह, कोई भी साथ नहीं देगा। जो दाढ़ी वाले हैं वो भी करें, बगैर दाढ़ी भी करें, मेरे पे एहसान करो, धक्का दो मेरे को। इंसाफ तो मिलेगा नहीं ना, धक्का दो, तुम्हारी भी जन्नत बनेगी।
0: टंडरो आदम मां गुज़िरियल ॾींहुं गुम थियल ॿारीअ खे जिंसी ॾाढाईअ बैदि क़तल करण जो इनकशाफ़। नींगरीअ जो लाश हथ जवाबदार गिरफ़्तार। ॾोह जो इतराफ़ पुलिस मूजिबि अंजुम मलवासी 5 वरनि जी दुआ अंसारीअ जो पुराणे तबलीगी मर्कज़ वटां लाश मिलियो। वाकियो शकी हुजण ते पोस्टमार्टम करायो वियो त ॿारीअ सां ज़्यादतीअ तसदीक थी। जवाबदार कासिम कंडाणीअ खे गिरफ़्तार कयो आहे, जंहिं ॾोह जो इतराफ़ कयो आहे। वकीलनि जो नींगरीअ जे क़तल वारे वाके ख़िलाफ़ एहतजाज। तालका इस्पताल खे बि सहूलियतूं ॾियण जो मुतालबो। इंसाफ़ जी वक़्त सिर फरहमी ज़रूरी आहे। ज़िली अदालतुनि ऐं हाई कोर्ट्स में राब्तनि खे बहितर करणो पवंदो। सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस यया आफरीदीअ चयो आहे त ज़िली अदालतूं इंसाफ़ वारे निज़ाम में कंगे जी हॾी वारी हैसियत रखनि थियूं। नौजवाननि जजिस बहितरीन अंदाज़ में इंसाफ़ जी फरहमी यकीनी बणाइनि। 1965 वारी जंग जे हीरोज़ शहीद मेजर राजा अज़ीज़ भट्टीअ जी 61 वर्सी सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह ऐं ॿियनि पारां भेटा पेश। सदर आसिफ ज़रदारीअ चयो त शहीद मेजर राजा अज़ीज़ भट्टीअ जी क़ुर्बानी वतन जे मिटी ऐं तक़दस लाइ रोशन मिसाल आहे। हाई कोर्ट सखर बेंच जे हुकुम ते आईजी सिंध जे फहमीदा पिताफ़ी केस जे जांच लाइ घोटकी अहमद जावेद आलम ओडो SSP आफ़िस में DIG सखर नासिर आफ़ताब पठाण SSP सां गॾिजाणी करे ब्रीफिंग वरिती। आईजी सिंध जो दौरो मीडिया खां गुजो रखियो वियो। ज़रियनि मूजिबि आईजी फहमीदा केस बाबति तफ़सील बि वरिता।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: मरीजनि खे दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिर अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमज़ोरी कन जो वहण कन जो सूर घटि ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दनि जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरियो ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जी मीरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर क़िस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
1: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
3: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मीरापुर। राबते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8743।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

0: 6:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: They're letting most ships go through. This is one country that they're not too happy with, and we'll get that straightened out.
4: हुसैन फोन ते ॿुधायो आहे त अमेरिका सां जंग नथा चाहिनि, जहाज़नि खे बि गुज़रण ॾेई रहिया आहिनि, रुगो हिकु मुल्क खे रोके रहिया आहिनि। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अरब जे तेल वारनि पाइपलाइन्स ते हमले जो ज़िमेवार ईरान खे करार ॾींदे चयो आहे त ईरान सां जंग ख़तम थींदे ई पेट्रोल बि सस्तो थी वेंदो। सऊदी वलीअद मुंहिंजो सुठो दोस्त आहे, सभु कुझु ठीकु थी वेंदो। सऊदी अरब जे पाइपलाइन ते हमले जो ज़िमेवार ईरान आहे, आबनाए अरम से कंट्रोल अमेरिका जो आहे।

0: ओमान में अरब मुल्कन सा सूमर ते थींदड़ इजलास में ओमान ईरान विच में मुआहदे ते सहियूं थींदियूं। ईरानी सदर मसूद पिज़िकशान चयो आहे त अरब मुल्कन जे सरज़मीन तां ईरान ते हमला थिया आहिनि। अमरीका खे पाबंदियूं ऐं नाकाबंदी ख़तम करण घुर्जे। इस्माइल बकाई चयो आहे त अबनाउरम जो कंट्रोल ईरान वटि आहे। तेल क़ीमतुनि में वाद जो ज़िमेवार बि अमरीका आहे। सऊदी अरब, उर्दन ऐं जापान खे ईरान ख़िलाफ़ ठहराउ जी हिमायत करण ते नतीजा भोगणा पवंदा। ईरान जे क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ीअ चयो आहे त मुतालबनि जी मञता ताईं अमरीका सां ॻाल्हियूं न थींदियूं। यमन जे हुसैन बाबुल मंदब जो कंट्रोल संभालण बाद आलमी आबी रस्ते में गश्त शुरू करे छॾियो। बाबुल मंदब जे आमबेट मेवन ते बि कब्ज़े जी दावा। यमनी फ़ौज चयो आहे त मुखा ऐं बाबुल मंदब में हुसैन जे थाकनि ते बमबारी कई आहे, जंहिं दौरान हुसैन जो वॾो नुक़सान थियो आहे। पाकिस्तान पारां सऊदी अरब ते हमलनि जी मज़ामत। हमला खिते जे अमन ऐं इस्तेहकाम लाइ ख़तरो करार। सऊदीअ सां गॾु बीहण वारे अज़म जो वर्जा परॾेही तर्जुमान चयो आहे त सऊदी अरब जे तेल लाइन ते ड्रोन हमलनि सबबि शहरी बि ज़ख़्मी थिया आहिनि। हमला आलमी कानून जी भञकड़ी आहिनि। हमले सां खिते जो अमन ऐं इस्तेहकाम मुतासिर थी सघे थो। मुल्क में नवनि सूबनि बाबति बहस हली रहियो आहे। नवनि सूबनि जो फ़ैसिलो पार्लियामेंट खे करणो आहे। नवनि सूबनि जे हवाले सां आवाम खां बि राय वरिती वेंदी। पीपुल्स पार्टी सूबनि जे मामले ते ज़रूरत खां वधीक रद अमल ॾिनो। सूबनि जो मामिलो पार्लियामेंट में ईंदो त नून लीग पॉलिसी बयान ॾींदी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाला चयो त वफ़ाकी घरू वज़ीरनि सूबनि वारे मामलनि ते काबीना तोड़ी पार्लियामेंट में न आहे ॻाल्हायो। वापारियुनि जे सेमिनार में थियल ॻाल्हि अहमियत जोगी न आहे।
1: कंदो रात मुंहिंजी घरवारीअ जी डिलेवरी यकीन कंदो मां गाॾीअ वारे ॾे वियुमि। मां हुनखे चयो डिलेवरी मसलो हलूं खैरपुर, चई पेट्रोल महांगो थी वियो आहे, 3000 रुपया किरायो वठंदो मां खैरपुर ताईं। आख़िर तड़फी तड़फी जेको हुनजो ॿार होत थी अहिड़ो असां सां ना कई हशर।
2: माण्हुनि जो जीअं जंजाल थी वियो आहे, गाॾी कढण जहिड़ा कोन माण्हू परेशान लॻा पिया।
3: अवामी तेल कुझु थी वियो आहे, ग़रीब माण्हू परेशान आहिनि, ख़ुदकशियुनि ते मजबूर आहिनि।
4: महांगाई जो जेको भूत आहे बोतल मां निकिरी आयो आहे। गरीब माण्हू केॾा
5: भुख ते मरनि था, 500 कमायूं था, 500 पूरा ई न आहे।
6: दाल चढ़े थी, सब्जी ॾिसो चढ़े थी, गिहु चढ़े थो, अटो ॾिसो 30-20 रुपया, 40 रुपया थी वियो। केरु गरीब माण्हू कान वठंदा।
0: पेट्रोल जे अघनि में ॻाटे ट्रोड़ बाद शहरनि जी सहप ख़तम करे छॾी। मुसाफ़िर गाॾियुनि जे भाड़नि में ॻाटे ट्रोड़ बाद खाध खुराक वारियूं शयूं बि महांगी थी वियूं। खाध खुराक वारियुनि शयुनि जा अघ बि वधी विया। शहरी सख़्त परेशान। सखर में शहरी इतिहाद जो एहतजाज, अलामती जनाज़ो बि कढियो वियो। पेट्रोल महांगो थियण सबबि अटो 30%, खीर 8%, मिर्च 16%, बसर 150%, गोश्त 15%, डबल रोटी 8% महांगी थी वई। शुमारियात खाते महांगाई वधण जी तस्दीक कंदे चयो आहे त बिजली 25%, LPG 55% महांगी थी वई आहे। पटाटा, मुर्गी, बेज़ा ऐं खंडु सस्ती थी आहे।

0: नमाज पढ़ने गया, पीछे से बच्ची गुम हो गई। जब सलाम फेर के देखा तो पीछे थी नहीं, तो वहाँ खिला तो पीछे मिली। कौन क्या करेगा, कोई कुछ भी नहीं करेगा। मैं गरीब हूँ ना, ऐसी मर जाऊंगा। धक्का दो मेरे को, इंसाफ तो मिलेगा नहीं ना, धक्का दो तुम्हारी भी जन्नत बनेगी।
1: रंडो आदमा गुजरियल डी गुम थियल बारड़ी के जिन्सी डाढ़ाई बाद कतल करण जो इनकशाफ। नींगरी जो लाश हथ जवाबदार गिरफ्तार, डोह जो एतराब। पुलिस मूजिब अंजम मलवासी पंजन वरियन जी दुआ अंसारी जो पुराने तबलीगी मर्कज वटा लाश मिलियो। वाक्य शकी हुजण ते पोस्टमार्टम करायो त बारड़ी सां ज्यादती जी तस्दीक थी। जवाबदार कासिम कुंडाणी गिरफ्तार कयो आहे, जंहिं डोह जो एतराब कयो आहे। वकीलन जो नींगरी जे कतल वारे वाक्य खिलाफ़ एहतजाज। तालका अस्पताल के सहूलतूं ॾियण जो मुतालबो। इंसाफ जी वक्त सिर फरहमी ज़रूरी आहे। ज़िली अदालतुनि ऐं हाईकोर्ट्स में राब्तनि खे बि बहितर बणाइणो। सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस यया आफरीदीअ चयो आहे त ज़िली अदालतूं इंसाफ़ वारे निज़ाम में करंगीअ जी हॾी वारी हैसियत रखनि थियूं। नौजवाननि जजिस बहितरी अंदाज़ में इंसाफ़ जी फरहमी यकीनी बणाइनि। उणिवीह सौ पंजहठि वारी जंग जे हीरो शहीद मेजर अज़ीज़ भट्टीअ जी एकाठी वर्सी। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ, वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह ऐं ॿियनि पारां भेटा पेश। सदर आसिफ ज़रदारीअ चयो त शहीद मेजर अज़ीज़ भट्टीअ जी क़ुर्बानी वतन जी मिटी ऐं तक़दस लाइ रोशन मिसाल आहे। हाई कोर्ट सखर बेंच जे हुकुम ते आईजी सिंध जे फहमीदा पिताफी केस जे जांच लाइ घोटकी आमद जावेद आलम ओढो। एसएसपी ऑफिस में डीआईजी सखर नासिर आफ्ताब पठाण एसएसपी सां गॾजाणी करे ब्रीफिंग वरिती। आईजी सिंध जो दौरो मीडिया खां गुजो रखियो वियो। ज़रियनि मूजिब आईजी फहमीदा केस बाबति तफ़सील बि वरिता। आमिर ज़िया जे दौर में जमहूरियत जे बहाली वारे तहरीक दौरान शहादतूं माणींदड़नि जी अॼु 43 वर्सी मल्हाई पई वञे। वारसनि ऐं पीपी अॻवाणनि जी खैरपुर नाथन शाह में 12 सेप्टेम्बर जे शहीदनि जी मज़ारनि ते हाज़िरी। शहीदनि खे भेटा पेश, नओं देरो में शहीदनि लाइ क़ुरान ख़ानी कई वई। टंडरो मस्ती भरिसां पढ़ियल नारी ऐं नौजवान पारां पसंदि पढ़ण लाइ निकिरण खां पोइ नारीअ जे वारसनि नौजवान जे घरनि खे बाहि ॾेई छॾी। जवाबदारनि अमजद फुलपोटर जे घर ऐं दुकान खे बायूं ॾेई छॾियूं। इलाइक़े वासनि मूजिबि अमजद फुलपोटरो घरवारीअ जे भाटीअ जी ज़ाल सां निकिरी वियो आहे। नारीअ जे वारसनि इल्ज़ाम मड़ियो त अमजद फुलपोटरो नारी खे अॻवा कयो आहे। सखर में सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ पीपुल्स लायर फोरम जी रैली। वकीरनि हाईकोर्ट बार खां रैली कढी शहर जो गश्त कयो। अॻवाणनि चयो त सिंध खे टोड़ण मुल्क खे कमज़ोर करण जे बराबर आहे। 1947 खां मुल्क में 4 सूबा आहिनि, वधीक सूबनि वारो राग बंदि कयो वञे। नओं देरो भरिसां फसल खे ज़हरीली दवा जो फुआरो कंदे हिकु हारी फोत, 3 ॼणा बेहोश। बुम्बटपुर में सारियल फसल खे फुआरो करण दौरान हारी हिदायत लाइ लाशारी फोत थियो। बेहोश थियल हारियुनि जो राबेल खखराणी, निसार अहमद, अज़ीज़ लाइ शामिल आहिनि, जिन खे अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। घोटकीअ में ॻोठाणे ते तशदुद वारे केस में अॻूणे एसएचओ क़ाबिल भयो ॿिनि ॾींहनि जे जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले। अदालत पारां क़ाबिल भयो अहलकार निसार महर जो रिमांड मंज़ूर कयो। अहलकार निसार महर खे बि पुलिस हथ खणी हणी रिमांड लाइ अदालत में पेश कयो वियो।

0: सोनी अज त ॾाढी ख़ुशि थी लॻे।
1: हा साईं, ॻाल्हि बि अहिड़ी आहे।
0: भला मूंखे बि ॿुधाए कहिड़ी ॻाल्हि आहे।
1: चाचे, जुम्मन जी खुशहाली जो राज़ ख़बर पए। उहे पंहिंजे ढोरनि खे जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइनि। हीअ चारो ढोरनि जो हाज़मो दुरुस्त करे थो, ढोर सिहतमंद थियनि था, गोश्त सां गॾो गॾु खीर बि वधे थो।
0: वाह सोनी वाह, वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई। पर किथे मिलंदो इहो जी जान सखर चारो मसालो?
1: साईं, रेडीअ ते था ॿुधाइनि, ॿुध ऐं अची वठी अच।
0: मां हाणे ई थो वञा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं।
1: हा साईं हा।
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ बिन्ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सोम

0: पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल

0: बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा।
4: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 03013803743।
5: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GA FM 94।

0: It's 4:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: Jitte dhor in
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: हुसैन फोन ते ॿुधायो आहे त अमेरिका सां जंग नथा चाहिनि, जहाज़नि खे बि गुज़रण ॾेई रहिया आहिनि, रुगो हिकु मुल्क खे रोके रहिया आहिनि। अमेरिका सां डोनाल्ड ट्रम्प सऊदी अरब जे तेल वारनि पाइप लाइन्स ते हमलनि जो ज़िमेवार ईरान खे करार ॾींदे चयो आहे त ईरान सां जंग ख़तम थींदे ई पेट्रोल बि सस्तो थी वेंदो। सऊदी वली अहद मुंहिंजो सुठो दोस्त आहे, सभु कुझु ठीक थी वेंदो। सऊदी अरब जी पाइप लाइन ते हमले जो ज़िमेवार ईरान आहे, अपना हरमुस ते कंट्रोल अमरीका जो आहे। अमरीका जारियत बंद करे त अपना हरमुस खुली वेंदो। अमान में अरब मुल्कनि सां सूमर ते थींदड़ इजलास में ओमान ऐं ईरान विच में मुआहिदे ते सहियूं थींदियूं। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त अरब मुल्कनि जी सरज़मीन तां ईरान ते हमला थिया आहिनि, अमरीका खे पाबंदियूं ऐं नाकाबंदी ख़तम करणु घुर्जे। इस्माइल बकाई चयो त अपना हरमुस जो कंट्रोल ईरान वटि आहे, तेल क़ीमतनि में वाध जो ज़िमेवार बि अमरीका आहे। सऊदी अरब, उर्दन ऐं जापान खे ईरान ख़िलाफ़ ठहराउ जी हिमायत करण ते नतीजा भोगणा पवंदा। ईरान जी क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ी चयो आहे त मुतालबनि जी महिता ताईं अमरीका सां ॻाल्हियूं न थींदियूं।

यमन जे हुसैन बाबुल मुनदिब जो कंट्रोल संभालण बाद आलमी आबी रस्ते में गश्त शुरू करे छो। बाबुल मुनदिब जे अहम बेट म्यून ते कब्जे जी दावा यमनी फौज चयो आहे त मखा ए बाबुल मुनदिब में हुसैन जे थाकन ते बमबारी कई आहे जे दौरान हुसैन जो वॾो नुकसान थियो आहे।

पाकिस्तान पारां सऊदी अरब के हमलन जी मुज़म्मत हमला खिते जे अमन इस्तेहकाम लाइ खतरो करार सऊदी सां गॾु बीहण वारे अज़म जो वर्जाओ परडेही तर्जुबान चयो आहे त सऊदी अरब जी तेल लाइननि ते ड्रोन हमलनि सबब शहरी बि ज़ख़्मी थिया आहिनि हमला आलमी कानूननि जी भॼकड़ी आहिनि हमलनि सां खिते जो अमन ऐं इस्तेहकाम मुतासिर थी सघे थो मुल्क में नवनि सूबनि बाबति बहस हली रहियो आहे नवनि सूबनि जो फैसलो पार्लियामेंट खे करणो आहे नवनि सूबनि जे हवाले सां अवाम खां बि राय वरिती वेंदी पीपल्स पार्टी सूबनि जे मामले ते ज़रूरत खां वधीक रदअमल ॾिनो सूबनि जो मामिलो पार्लियामेंट में ईंदो त नवनि नून लीग पॉलिसी बयान ॾींदी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनावला चयो आहे त वफ़ाक़ी घरू वज़ीर सूबनि वारे मामले ते काबीना तोड़े पार्लियामेंट में नाहे ॻाल्हायो वापारियुनि जे सेमिनार में थियल ॻाल्हि अहमियत जोगी नाहे

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा।
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज जी FM 94।

मेरे तमाम सुनने वाले लिसनर्स को मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, जी फॉर इमीडिएट सक्कर की तरफ से प्यार भरा सलाम। तो जी जनाब, आप लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बखर आफियत हंसते मुस्कुराते हमेशा की तरह आप लोग आज भी मेरे साथ होंगे। तो जी जनाब, मैं हूँ आप सबकी अपनी प्यारी सी और उसी आवाज के साथ आपकी प्यारी प्यारी सी आरजे कोमल खान। इस वक्त आप लोग मुझे सुन रहे हैं जी एफ एम सखर से, और प्रोग्राम हमेशा की तरह आप लोगों के लिए आवाज का रिश्ता। जी बिल्कुल, आवाज प्रोग्राम आवाज के रिश्ते में मैं हूँ आप सब की अपनी आरजे कमल खान, और आवाज का रिश्ता दिल से दिल तक। जी बिल्कुल, आवाज का ही तो रिश्ता होता है, आवाज से ही तो रिश्ते बनते हैं। इस तरीके से आपके साथ रहूंगी मैं और पूरा पूरा हम लोग टाइम देंगे आज शाम 5 से शाम 7 बजे तक मैं आप लोगों के साथ ही साथ रहती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ होंगे, जिधर होंगे, मुझे सुन रहे होंगे, कमेंट्स करके प्रोग्राम में शामिल होकर अपनी शमूलियत के बारे में बताएंगे कि भाई आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे सुन रहे हैं। अच्छा जी जनाब, तुम्हारी तरफ से तो पहले तो मैं एक चीज कहना है कि आप लोग को शाम बखैर। लोग सुबह में आते हैं, मैं शाम में कहती हूँ भाई शाम बखैर मेरे तमाम लिसनर्स को, पैर पैर लिसनर्स को, क्योंकि इस वक्त 5 बजे का टाइम है और ये टाइम कोई भी नहीं होता, हर कोई फ्री होने लगता है। शाम का टाइम है, ठंडा ठंडा टाइम होता है। इस वक्त सब अपने अपने घरों की तरफ रवा तमा होते हैं, चाहे वो इंसान हो, शहरिंग हो, परिंद हो, या फिर कोई भी जानदार, वो अपने अपने मंजिल की तरफ, अपने रस्ते की तरफ रवा दवा होते हैं। कोई ट्रैवल में सफर करके दौरान मुझे सुन रहा है, वो भी अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। कोई घर में है, कोई ऑफिस से अपने घर की तरफ जा रहा है, या फिर बच्चे हैं जो ट्यूशन जा रहे होते हैं, अकेडमी जा रहे होते हैं, कोई नहीं भी जा रहे होते। तो जी जहाँ पर गर्म भी सुन रहे हैं, हर कोई अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा होता है और इंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ साथ आवाज का रिश्ता। जी बिल्कुल, शाम को इस टाइम और इंसान के साथ और दूसरी मखलूकात के साथ जो भी नए भाई दुनिया में, और उनके साथ साथ ये जो एक सूरज है वो भी अपनी मंजिल की तरफ रवाना होता है। दुनिया का एक निजाम, एक कारवां अपने टाइम पर अपनी मंजिल की तरफ सब चल रहे हैं। वही चीज है कि आज जिसे खत्म, आज सूरज डूब रहा है लेकिन वो हमें एक उम्मीद देकर जा रही है, कल मैं फिर आऊंगा, वो फिर आएगा। तो इसी तरीके से हमारी भी उम्मीदें होती हैं बहुत सी, लेकिन हमें उम्मीद सिर्फ अल्लाह से लगानी चाहिए, क्योंकि वही पूरा करते हैं। इंसानों से लगाई हुई उम्मीदें जो है, इंसान हम कहते हैं ना कि हमें धोखा मिलता है, तो भैया इंसान से उम्मीद लगाना, जिसको पता ही नहीं आपने उससे क्या उम्मीदें।

पोएट्री कुछ भी ऐसा शेयर करना या अपनी कोई कहानी, क्योंकि शाम का टाइम है और अक्सर शामें उदास होती हैं और ये दिन भी कुछ उदास उदास वाले ही चल रहे हैं अब आजकल देखा जाए तो, क्योंकि सर्दियों की आमद आमद शुरू होने वाली, गर्मियों का अब मौसम जाने वाला है, तो ये उदास शामें होती हैं। कुछ लोगों के लिए उदास हो जाती हैं, कुछ लोगों के लिए खुशगवार, लेकिन उदास इसलिए जरूरी नहीं कि कोई एक ना खुश खबर वाकई है, हमारी जिंदगी को उदास कर अच्छी यादें भी हमें समटाइम उदास कर जाती हैं। तो जी बिल्कुल, आज की शाम भी हम ऐसे ही कुछ नाम करने जा रहे हैं, तो एक छोटी सी बात कहूंगी उसके बाद चले जी। आज की शाम हम करते हैं कुछ यादों के नाम, ठीक है ना। हम हर शाम कोई ना कोई किसी न किसी के नाम करेंगे, तो आज हमने कुछ यादों के नाम कर दी, वो यादें जो वो पाते जो हमारी जिंदगी की आज यादें बन चुकी हैं। कल वो हमारा गुजरा हुआ कल थी, एक टाइम वो हमारा प्रेजेंट थी, पहले फ्यूचर थी फिर प्रेजेंट थी, अब वो हमारा माजी बन चुकी हैं और वो हमें यादों में रह गई हैं। तो ये बिल्कुल जिंदगी में कुछ शामें ऐसी होती हैं ना जो हम कभी नहीं भूल पाते। कुछ शामें बिल्कुल मतलब कि वो ऐसी यादें ना उसे कुछ याद करने की खास वजह होती है, ना कोई बड़ी वजह, लेकिन फिर भी हमें याद होती है क्योंकि वो खुशगवार लम्हे होते हैं। तो हर वक्त हमें सिर्फ एक ना खुशगवार वाकई और लम्हों को याद नहीं करना चाहिए, अच्छे लम्हे भी जिंदगी में गुजरते हैं, उन्हें भी याद रखना चाहिए। बस वो शामें दिल में उतर जाती हैं, कभी किसी अपने का फोन आ जाना और आज ये सोचना कि अब वो फोन नहीं आता, वहां उस नंबर से मैसेज नहीं आता, कॉल नहीं आता। हम शाम के इस पैर बैठकर उनसे बातें करते थे, कभी वो हमारे सामने बैठे होते थे, कभी आज वो हमारे लिए याद बन चुके हैं। वो कोई भी शख्सियत हो सकती है, कोई इंसान हमारी जिंदगी में खास, हमारा दोस्त, हमारा अपना रिश्ता, कोई करीबी। शायद आज वो किसी दूसरे शहर में, दूसरे मुल्क में है, वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनसे उनके गुजारे हुए लम्हे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान, कुछ हालात ऐसे होते हैं कि हम उनसे नहीं मिल पाते, कोई रابطہ कुछ नहीं होता, तो बस एक अच्छे लम्हे उनके साथ गुजरे हुए याद रह जाते हैं, हमें वो याद रखने चाहिए। और वो शामें हमें याद दिलाती हैं कि इनके साथ गुजरे हुए लम्हे ऐसे थे जो कभी हम भूल ही नहीं सकते। बहुत सी ऐसी शामें होती हैं आपने किसी फ्रेंड के साथ गुजारेंगी, कहीं कैफे में, कहीं रेस्टोरेंट में, किसी पार्क में, पब्लिक प्लेस में हंसी मजाक करते हुए चलते हुए, कि लम्हे में आपको वो चीजें वो वक्त रहते, सम टाइम एक कप चाय आपको किसी की याद दिला जाती है। तो जी बिल्कुल, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बहुत सी बातें करते रहेंगे हम प्रोग्राम।

0: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 03073592120।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड, मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नवाबशाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼु कल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8347।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

शेयर करती हूँ. इन्होंने लिखा है कि पैसा कमाने में वक्त लगता है मगर उसे खोने में कभी कभी एक गलत फैसला काफी होता है. इसलिए हर मौके पर जो बहुत बड़ा फायदा दिखाए जरूरी नहीं कि उसे पकड़ लेना चाहिए. ये राज इनका मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने लिखा है कभी बेचारा बिना भी कामयाबी होती है. शायद ये कुछ ऐसा ही लिखना चाह रहे थे. पहले टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है. इसके साथ ही इन्होंने सबको सलाम कहा है तो जी बिल्कुल मेरे तरफ सबको आपको सलाम. और चलते चलते मेरा मतलब है कि प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं. अभी हम नहीं चाह रहे, अभी हम यहीं पर हैं, ठीक है ना. तो आवाज के रिश्ते में आप आरजे कमल शाम 7 बजे तक आपके साथ रहेगी और आप भी मेरे साथ होंगे उम्मीद करती हूँ. अच्छा जी, इसके साथ ही अब्दुल रजाक साहब हैं और ये कहते हैं मोहम्मद खान और बेवफा जमान और ये इन्होंने हमें ज्वाइन किया है थाली पोटा स्टाफ से. प्रोग्राम सुन रहे हैं ये हमारा जी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया. ये हमारा शो सुन रहे हैं. ये कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम कमल खान, कैसी हैं आप बहन. तो जी बिल्कुल वालेकुम सलाम कमल खान, हमेशा की तरह शाद बशाश खुश खुद आप लोगों के साथ. और आप लोग को भी यही दुआ देती है कि आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें. अच्छा जी, प्रोग्राम में एक और सॉन्ग प्ले करती हूँ, वरना बोलिए कमल खान बातें करती है, सॉन्ग कम प्ले करती है. तो जी बिल्कुल एक और मैं सर अली बागर अहमद की खूबसूरत सी आवाज में ये ट्रैक प्ले कर चुकी हूँ कोक स्टूडियो का. मेरे साथ आप लोग भी इंजॉय करें मलंग. थोड़ा सा ऐसा भी म्यूजिक होना चाहिए ना. हर वक्त इंसान को सैड भी नहीं रहना चाहिए. 4 दिन की जिंदगी हंसते मुस्कुराते खुशी खुशी गुजारें.

0: जोशो, अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अब आप सुनेंगे

0: a while. We've had discussions. The Houthis called us, and they don't want to fight with us. They let us know. They don't want to fight with us. They don't want me to go after them. They don't want us to go after them. But they've called, and they've talked to us, and they don't want us to. They would much prefer not having us involved. And they're letting most ships go through. This is one country that they're not too happy with, and we'll get that straightened out.
1: ओसीएन फोन ते ॿुधायो आहे त अमरीका सां जंग नथा चाहिनि जहाज़नि खे बि घुसण ॾेई रहिया आहिनि रुगो हिकु मुल्क खे रोके रहिया आहिनि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब जे तेल वारनि पाइप लाइन ते हमलनि जो ज़िमेवार ईरान खे करार ॾींदे चयो आहे त ईरान सां जंग ख़तम थींदे ई पेट्रोल बि सस्तो थी वेंदो सऊदी वली अहद मुंहिंजो सुठो दोस्त आहे सभु कुझु ठीकु थी वेंदो सऊदी अरब जी पाइप लाइन ते हमले जो ज़िमेवार ईरान आहे अपना हरमुस ते कंट्रोल अमरीका जो आहे अमरीका जारियत बंद करे त अपना हुरमुस खुली वेंदो अपना हुरमुस बाबति सूमर ते ओमान सां माहिदनि ते सहियूं थी वेंदियूं ईरानी सदर मसूद पिस्टिकियान चयो आहे त अरब मुल्कनि जी सरज़मीन तां ईरान ते हमला थिया आहिनि अमरीका खे पाबंदियुनि ऐं नाकाबंदी ख़तम करणु घुर्जे इस्माइल बकाई चयो त अपना हुरमुस जो कंट्रोल ईरान वटि आहे तेल क़ीमतनि में वाध जो ज़िमेवार बि अमरीका आहे सऊदी अरब उर्दन ऐं जापान खे ईरान ख़िलाफ़ ठहराउ जी हिमायत करण ते नतीजा भोगणा पवंदा ईरान जी क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ी चयो आहे त मुतालबनि जी महिता ताईं अमरीका सां ॻाल्हियूं न थींदियूं यमन जे हुसैन बाबुल मुंदब जो कंट्रोल संभालण बाद आलमी आबी रस्ते में गश्त शुरू करे छॾियो बाबुल मुंदब जे अहम बेट मेवन ते कब्ज़े जी दावा यमनी फ़ौज चयो आहे त मखा ऐं बाबुल मुंदब में हुसैन जे थाकनि ते बमबारी कई आहे जंहिं दौरान हुसैन जो वॾो नुक़सान थियो आहे पाकिस्तान पारां सऊदी अरब ते हमलनि जी मज़म्मत हमला ख़िते जे अमन ऐं इस्तेकाम लाइ ख़तरो करार पॾे तर्जुमान चयो आहे त सऊदी अरब जे तेल लाइननि ते ड्रोन हमलनि सबबि शहरी बि ज़ख़्मी थिया आहिनि हमला आलमी कानूननि जी भञकड़ी आहिनि हमलनि सां ख़िते जो अमन ऐं इस्तेकाम मुतासिर थी सघे थो मुल्क में नवनि सूबनि बाबति बहस हली रहियो आहे नवनि सूबनि जो फ़ैसिलो पार्लियामेंट खे करणो आहे नवनि सूबनि जे हवाले सां आवाम खां बि राय वरिती वेंदी पीपल्स पार्टी सूबनि जे मामले ते ज़रूरत खां वधीक रते अमल ॾिनो सूबनि जो मामिलो पार्लियामेंट में ईंदो त नून लीग पॉलिसी बयान ॾींदी वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनावला चयो आहे त वफ़ाक़ी घरु वज़ीर सूबनि वारे मामले ते काबीना तोड़ी पार्लियामेंट में नाहे ॻाल्हायो वापारियुनि जे सेमिनार में थियल ॻाल्हि अहमियत जोगी नाहे

0: इंतजार कंदो रात मुझी घरवारी जी डिलीवरी यकीन कंदो मा गाडी वाले दे विम मा उने के जवा डिलीवरी मसलो हलो खैरपुर चई पेट्रोल मांगो थी आ 3000 रुपया किराए वठन मा खैरपुर काई आखिर तड़पी तड़पी जको उने जो बारो होत थी एड़ो असा ना ना कई हशर
1: मानु जो जीण जंजाल थी आ गाडी कढण जेड़ा कोन मानु परेशान लगा था
2: अवामी से लुटी हुई है भाई मानु परेशान खुद कशन दे मजबूर है
3: महंगाई जो जो भूत आ बोतल मां निकली आयो गरीब मां के ना
4: 50 डा भुखते मरण ता 500 कमायो ता 500 पूरा ही ना है के हुकूमत ता सोट दे अस गरीब फांसी आयो
5: सी रह वाला आयो असन ते वडा असर पोजी आ न असन जो रोजगार बंद थी वा
6: असर बुरो आ जायो पालो दा वडो असर आ जुलमा जो नी रोयो ता मा लाया
7: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
8: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000 3105109 0300 3105109।
9: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोज हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03201800003।

0: ऐं कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: मालवन भारन लाए खुश खबरी 50 सालन खां आजमायल सखर वारन जो जीजान ढोर चारो मसालो जानवरन में खीर ऐं गोश्त वधाए अव्हां के खुशहाल बनाए हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाब आहे।
2: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-460100।

ऐं अव्हां सभु ॿुधी रहिया आहियो जी एफ एम 94 जे लाइव स्टूडियो मां प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि। जीअं त लिसनर्स, अल्लाह पाक जूं हज़ारे नेमतूं असां वटि मौजूदु आहिनि, पर उन्हनि मां सभ खां वॾी नेमत सिहत आहे। जॾहिं तंदुरुस्ती हुजे थी, तॾहिं ज़िंदगी जो हर लम्हो ख़ूबसूरत ऐं बावफ़ा लॻंदो आहे। प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि में असांजे स्टूडियो में मौजूदु हूंदा आहिनि डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमूर साहब, जेके मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾींदा आहिनि।

0: ऐं अव्हां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-851, 0301-2196-851। सभु खां पहिरीं त असां डॉक्टर साहिब खे पंहिंजे प्रोग्राम में ख़ुश आमदी चवंदासीं। डॉक्टर साहिब अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: डॉक्टर साहिब कीअं आहियो? तबियत सभु ठीकु आहे?
1: जी साईं, अलाह ताला जा शुक्र।

0: ख़ासि बीमारियूं हूंदियूं आहिनि, उन्हनि जे बारे में अव्हां ॿुधंदड़नि ताईं सामाईन ताईं हिकु ॼाण पहुचाईंदा आहियूं त इहा बीमारी जेको आहे सो छो थींदी आहे या थी वञे त उन जे लाइ फस्ट एड जेको आहे सो अव्हांखे छा करणु खपे या जेको आहे सो उन जे लाइ परहेज़ कहिड़ी करणु खपे या उन जे लाइ दवा कीअं इस्तेमालु करणु खपे, कहिड़ी इस्तेमालु करणु खपे। मर्ज़ जे हवाले सां ॻाल्हि कयूं त हज़ारे मर्ज़ हूंदा आहिनि, हज़ारे मर्ज़नि जे बारे में हिन महिल ताईं प्रोग्राम करे चुको आहियां, हिकु हिकु मर्ज़ जे बारे में सौ दफ़ा जेको असां पंहिंजे पेशंट्स खे आगाही ॾेई चुका आहियूं। वरी बि हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हांखे ख़बर आहे त अॼुकल्ह जोड़नि जो मर्ज़ आम थी चुको आहे, जोड़नि जो मर्ज़, हॾनि जो मर्ज़ आम आहे। इहो छो थींदो आहे, उन जा हज़ारे जेको आहे सो यानी तव्हांखे जिते बि वेंदो त हज़ारे क़िस्म जूं दवाऊं मिलंदियूं, हज़ारे क़िस्म जा जेको आहे सो इलाज मिलंदा। के गोॾनि में उसियूं हणाईंदा आहिनि वीचारा, के जेको आहे सो मालिशूं कराईंदा आहिनि, के लेप ॾियारींदा आहिनि, के टकोरूं ॾियारींदा आहिनि, के सिकायूं ॾियारींदा आहिनि। सो जेको इलाज होम्योपैथिक में अव्हांखे ॿुधाईंदा आहियूं दवाउनि जे रस्ते, उन सां जेको आहे सो पेशंट 100% माशाला ठीकु थी वेंदो आहे। हा ईअं थींदो आहे, असां वटि उहे पेशंट जेकॾहिं हिन महिल ताईं कुझु पेशंट अहिड़ा बि आहिनि जेके ठीकु न थी सघिया आहिनि, उन्हनि जा असबाब इहे आहिनि त उहे ऑलरेडी पहिरियां ई जेको आहे सो कंहिं लॉन्ग टाइम जे लाइ काफ़ी लंबे अरसे ताईं, मिसाल अंग्रेज़ी दवाऊं जंहिंखे असां कार्टिज़ोन चवंदा आहियूं, उहे इस्तेमालु करे चुका हूंदा आहिनि, पोइ ज़ाहिरी आहे त उन में होम्योपैथिक दवा जेको आहे सो नाकारा बणिजी वञे थी, छो जो उहे अॻे ई जेको आहे सो हू अहिड़ो हिकिड़े क़िस्म जो जीअं असां उनखे सिंधी में चवंदा आहियूं मिठो ज़हर, कार्टिज़ोन उहो हिकिड़ो मिठो ज़हर आहे जेको हर यानी अहिड़नि मर्ज़नि में जीअं दमे जो पेशंट हूंदो आहे उन में बि कार्टिज़ोन इस्तेमालु कई वञे थी। पोइ हिकु दफ़ो पेशंट हिरी त वञे थो लेकिन उन महिल जल्दी क्विक हुनखे रिलीफ मिले थो, फ़र्क़ु पवे थो, लेकिन अॻिते हली उन जे लाइ उहे काफ़ी मसाइल थींदा आहिनि। अॻिते हली जॾहिं उमिरि हुन जी वधंदी आहे, मर्ज़ जॾहिं वधंदो आहे त पोइ हुनखे को बि दवा असरु न कंदी आहे, चाहे उहो दमे जो मरीज़ हुजे, चाहे उहो जोड़नि जी तकलीफ़ जो मरीज़ हुजे, चाहे रगुनि जी तकलीफ़ जो मरीज़ हुजे या कंहिं बि अहिड़ी बीमारी जो मरीज़ हुजे। जोड़नि जे हवाले सां ॻाल्हि कयूं त जोड़नि जे सूर लाइ तमामु आमतौर ते इहो ई मशहूरु हूंदो आहे त हीउ हिकु दफ़ो थी वियो त वरी कोन छॾींदो आहे, लेकिन ईअं हरगिज़ न हूंदो आहे। होम्योपैथिक इनखे मुमकिन कयो आहे ऐं पहिरियां बि मरीज़ जी सुञाणप कजे त जोड़नि जा सूर, जीअं मां पहिरीं ॿुधायमि त कई क़िस्म जा हूंदा आहिनि, सभिनी जो इलाजु पंहिंजी हिकमत अमली सां कयो वेंदो आहे। ऐं तव्हांखे जोड़नि जे सूर में ईअं थींदो आहे जो घणनि खे सोजन थींदी आहे, अकड़ाव थींदो आहे, ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो जेको आहे सो खोड़ सारा डॉक्टरनि जी मां पहिरीं ॻाल्हि कई ईंदा आहिनि त जीअं इंजेक्शन्स इस्तेमालु थींदियूं आहिनि, कार्टिज़ोन इस्तेमालु थींदियूं आहिनि, लेकिन जेको आहे सो मर्ज़ तकलीफ़ वधंदी वेंदी आहे, सोजन वधी वेंदी आहे। थींदो ईअं आहे जो उहो जेको अंदरि असांजे हा जेके जोड़नि जा जेके हॾ हूंदा आहिनि, हॾनि में या जेके बि असांजा ही गोॾा हूंदा आहिनि उन्हनि जे विच में हिकिड़ो लिक्विड हूंदो आहे जेकी जंहिंखे असां मिख चवंदा आहियूं या सिमिन फ्लूइड जेके असां इंग्लिश में चवंदा आहियूं, उहा हूंदी आहे। जॾहिं उहा घटिजी वेंदी आहे त पोइ उन में जेको आहे सो उहो गैप ख़तमु थींदो आहे ऐं पोइ जेको आहे सो गोॾा पाण में टकराइणु शुरू कंदा आहिनि ऐं पोइ उहे कॉटिलेज जेको आहे सो उन में थी वेंदी आहे। यानी हीअ हिकिड़ी मेडिकल लैंग्वेज आहे, लेकिन जेके ॿुधंदड़ आहिनि, सम्झंदड़ आहिनि ऐं जेके वठंदड़ आहिनि उहे उनखे बख़ूबी सम्झंदा हूंदा त कॉटिलेज छा आहे, या तकलीफ़ कहिड़े क़िस्म जी आहे, मॉलिश थींदी आहे त छा थींदो आहे, या कैल्शियम जी कमी थी वेंदी आहे, विटामिन डी डेफिशंसी थी वेंदी आहे त पोइ छा थींदो आहे, त इन्हनि शयुनि जूं जॾहिं इन्हनि में कमियूं थी वेंदियूं आहिनि त मरीज़ जेको आहे सो उहो अॻिते हली जेको घणी कश्मकश में अची वेंदो आहे। जीअं मां पहिरीं ॻाल्हि कई त ऑस्टियोआर्थराइटिस जी बीमारी थी वेंदी आहे ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो कॉटिलेजिस जेको आहे सो पाण में थी वेंदा आहिनि ऐं जोड़नि जी उहा बीमारी जेका हिकु हॾीअ खां ॿी हॾीअ खे अची भञणु लॻे, जीअं मां पहिरीं ॻाल्हि कई त उनखे कॉटेज चइबो आहे। असांजी हॾियुनि जे विच में बि जीअं बि मिसाल ॻाल्हि कई मिख थींदी आहे, उहा घटिजी वेंदी आहे, पोइ पाण में हॾियूं जेके बि हूंदियूं आहिनि उहे पाण में टकराइबियूं आहिनि ऐं अॻिते हली उहे भुरण लॻंदियूं आहिनि ऐं उहे टेड़ियूं थी वेंदियूं आहिनि। इहो सॼो जेको आहे सो सिस्टम ईअं हूंदो आहे। हिकिड़ो जेको पाण मुरादो माण्हू मेडिसिन्स खाईंदो आहे या अहिड़े क़िस्म जूं ॿियूं दवाऊं इस्तेमालु कंदो आहे जंहिंजे करे जेको आहे सो इहे मसाइल थी वेंदा आहिनि। लेकिन होम्योपैथिक में अल्लाह ताला जी मेहरबानी से असा वट तमाम एकड़ी बेहतरीन ट्रीटमेंट मौजूद होंगी है जी मरीज के दींदा आयो कुछ टाइम तई वो इस्तेमाल उनके करनी होंगी है उनसा वो उन जो बगैर इंजेक्शन के उनको सूर भी घटजी वो है उनकी सोजन भी घटजी वी है उनकी जी मिख की कमी होंगी है वह भी पूरी थी वी है। अच्छा सूर ये तो मैं बुधायम तो इनमें इन जो इलाज है या इनो है या नो है एक्चुअली उनकी सुणप भी तुम बुधायम जैसे सूर थी वो है तो यो मिख घटी वी है सोजन थी वी है जैसे उनमें सूर शिद्दत से थी वो है बुखार भी घर के रहने लगन है मानू डिप्रेशन में अची वो है अगत इनमें यूरिक एसिड भी जिसम इंसानी जिसम जो जो यूरिक एसिड हों वो भी वो है अमूमन सतन तई उन रेंज हूँ जो नॉर्मल हों पर जैसे यूरिक एसिड फीमेल में छह तई हों मर्दन में सतन तई हों पर जैसे वो उन रेंज का वी वन तो उनसे गडो गुड़ उनके यानी हलन में तकलीफ़ वधी वेंदी आहे जोड़न में सूर तमामु घणो वधी वेंदो आहे सोजन भी घणी थी वेंदी आहे ऐं अॻिते हली जेको आहे सो पेशेंट जो बी पी बि हाई थियणु लॻंदो आहे ऐं गुर्दा बि गुर्दनि ते बि असरु थियणु लॻंदो आहे गुर्दा अॻिते हली ईअं बि थियो आहे जो गुर्दा बि फेल थी वेंदा आहिनि इन जे करे अहिड़े क़िस्म जी तकलीफ़ूं जेकॾहिं थियनि थियूं त महिरबानी करे हिकु त पंहिंजे मुंहुं दवाई हरगिज़ न वठो ऐं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मां इहो चवणु चाहींदुसि इन प्लेटफॉर्म तां त जीअं मां पहिरीं ॻाल्हि कई त खोड़ सारा पेशेंट असां वटां बि अहिड़ा आया जेके न ठीकु थी सघिया सिर्फ़ु उन जी वजह इहा ई हुई जो मरीज़ लेट सां आया ऐं हुननि अहिड़े क़िस्म जूं दवाऊं इस्तेमालु थियल हुयूं इन जे करे पर जेकॾहिं कुझु अरिसो हुन जी दवा इस्तेमालु थियल बि आहे ऐं असां वटि बर वक़्तु अची वञे थो ऐं कुझु टाइम ज़ाहिर आहे हिकिड़ो पेशेंट मरीज़ त मरीज़ हूंदो आहे असां वटि वरी उबतो सिस्टम हूंदो आहे हिकिड़ो माण्हू किथे ॿ साल पंज साल ॾहनि सालनि पंद्रहनि सालनि ताईं मरीज़ इन बीमारी में तकलीफ़ में रहंदो आहे असां अमूमनि पंहिंजे प्रोग्रामनि में चवंदा आहियूं त घटि में घटि टिनि महीननि ताईं असांजी ट्रीटमेंट हलंदी आहे त हू मरीज़ उन खे ज़हन में रखी वेंदो आहे त टिनि महीननि में पेशेंट बिल्कुलु बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे लेकिन थींदो इहो आहे असां चवंदा आहियूं घटि में घटि टे महीना पेशेंट ट्रीटमेंट वठे त उन सां हुनजी जेको आहे सो जेकी तकलीफ़ हूंदी आहे त काफ़ी हद ताईं घटिजी वेंदी आहे ऐं आहिस्ते आहिस्ते जेकी नुक़्स हूंदो आहे उहो बि ख़तमु थींदो आहे ख़तमु थींदो वेंदो आहे उन में टाइम लॻंदो आहे पोइ चाहे जेकॾहिं को अहिड़ो नुक़्स वधी वेंदो आहे अहिड़ी का बीमारी घणी आहे त जेकॾहिं टे महीना न त पंजनि महीननि ताईं छहनि महीननि ताईं बि ट्रीटमेंट हुनजी हलंदी आहे सो इहे ॻाल्हियूं नंढियूं नंढियूं हूंदियूं आहिनि जेकी असांजे प्रोग्राम जे तवसुल सां करणु ज़रूरी हूंदी आहे ऐं के ईअं बि हूंदा आहिनि दोस्त जेके फ़ोन करे ॿुधाईंदा आहिनि त असां दवा वरितीसीं ऐं दवा मां जेको आहे सो असांखे हीअं थियो त दवा मां पहिरीं ॻाल्हि ॿुधाई त असांजी दवा जो को बि साइड इफ़ेक्ट नाहे हा उहे पेशेंट जेके दवा खे सही इस्तेमालु न कंदा रेगुलरली इस्तेमालु न कंदा त उन्हनि खे फ़र्क़ु दवा न ॾींदी आहे असां चयोसीं टे महीना या चारि महीना दवा इस्तेमालु उनजो इहो मक़सदु न आहे त तव्हां कुल ई महीने में हिकिड़ो दफ़ो दवा वठी वियो ऐं वरी चारि महीना आयो त तव्हां चारि महीना दवा खाधी पर जेकॾहिं असां ॾहनि ॾींहनि जी दवा ॾिनीसीं उनखे तव्हां रेगुलरली चइनि महीननि ताईं दवा यूज़ कई त उनखे चइबो आहे टे चारि महीना दवा वठणु पाणी जेकी दवा हूंदी आहे थधे पाणी में इस्तेमालु न करणी हूंदी आहे दवा जा मखसूस डोज़ हूंदा आहिनि हर दवा अलॻि अलॻि पाणी में पीअणी हूंदी आहे ॾह ॾह फुड़ा पीअणा हूंदा आहिनि इहा हिकिड़ा सिगरेट पीबो आहे त सिगरेट खां जेको आहे सो 15 मिंट अॻे दवा पीबी आहे गुरड़ी करे पोइ जेको आहे दवा पीबी आहे दवा पी यकदमि सिगरेट न आहे पीअणो हूंदो वरी गुरड़ी करे पोइ 10-15 मिंट खां पोइ सिगरेट पीबो आहे त इहे हिकिड़ा दवा जा क़वानीन कानून हूंदा आहिनि दवा जो तरीक़ेकार आहे जेकॾहिं इन तरीक़े सां केरु दवा खे इस्तेमालु न कंदो आहे त पोइ जेको आहे सो दवा नाकारा थी वेंदी आहे ऐं दवा जो को असरु न रहंदो आहे सो इहे नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं हुयूं जेके असां पंहिंजे ऐं नंढी हिकिड़ी सम्झाणी हुई ऐं नंढी हिकिड़ी ॼाण हुई जेके असां पंहिंजे ॿुधण ताईं पहुचाईंदी उमेदु आहे त अॼोको प्रोग्राम जो मौज़ू अवां सभिनी खे ज़रूरु जेको आहे सो पसंदि आयो हूंदो इन प्रोग्राम जे मुतालिक़ महिरबानी करे हिकु दफ़ो ॿीहर ज़रूरु इहो ॻाल्हि नोट कंदा त हिन प्रोग्राम जे मुतालिक़ जेको बि रियल हक़ीक़ी को पेशंट आहे केस आहे त उहो उन बारे में ज़रूरु सुवाल पुछंदा अजायो पेशेंट जेको बि आहे अजायो जेको बि शौक़ीन आहे उहो ईअं महिरबानी करे हिन प्रोग्राम में कॉल न करे त बहितरु आहे जो ॿिए जेको ज़रूरतमंद आहे उनजो टाइम बि वेस्ट थिए थो ऐं असांजे प्रोग्राम जो बि टाइम वेस्ट थींदो आहे वॾी महिरबानी
1: तमामु बहितरीन माशाल्लाह सर तव्हां हिकु बहितरीन ॼाण ॾिनी असां अब सब बज़रिए कॉल ज़रिए शामिल थी सको था असान प्रोग्राम में असान प्रोग्राम जो लाइव कॉल नंबर है 0301-196-8051। डॉक्टर साहब मुख्तलिफ़ बीमारियों जहा माहिर डॉक्टर आज जिनमें गुर्दे पिते मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कंदा संदन जोड़न गोडन जो सूर कुन रग जो सूर नक कन गलो पुराणलो नज़ो नज़लो निछू मथे जो सूर अध मथे जो सूर नज़र की कमजोरी कन जो वहन कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालज खंग टीबी मैदे जो सूर मैदे की अल्सर तिली जो वधण जिगर हेपेटाइटिस बी सी गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की रंग खारिश चेहरे की खारिश फट फुरणियों बारन में कद जो न वधण औरतुन ए मर्दन के पोशीदा बीमारियों में जो कामयाब इलाज कंदा आहे अयां सब प्रोग्राम में लाइव कॉल जरिए शामिल थी सको था असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-196-8051 0301-216-851। डॉक्टर साहब अरबा खमीस जुमे छंछर आचार ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोटरी रोड में रापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि ऐं नोट अंगारे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे ऐं हिन में हफ़्ते जा 3 ॾींहं जुमो छंछर आचार चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे बाक़ी दवा मरीज़ खे स्टोर तां वठणी हूंदी आहे। अयां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिल थी सघो था असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-196-8051। इन ते अवां कॉल करे कंहिं बि मौज़ू बाबति ॼाण हासिल करे सघो था। सर कॉलनि जो सिलसिलो जारी थी चुको आहे लेकिन इन खां पहिरियां ब्रेक वठंदासीं। हाणे वक़्तु थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो त हाणे हलूं था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। गॾु गॾु रहिजो ऐं ॿुधंदा रहो GFM 94 मेहरापुर।
2: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद वाइटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: हथे गुल मींदी पीरे गुल मींदी
4: आई अदी अज त डाडी खुश पे नजर अची
5: छो न खुश थिया अदी जदे खा मुझे मुड़स ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो खरायो आहे त खीर जी पैदावार बीणी थी वई आहे ऐं हाणे पैसा भी बीणा था अचन। ही दिस सोनियो चूड़ियो
4: मां बि वञी चवां हुन खे त ढोरन खे सखर वारन जो चारो मसालो ई खाराए।
6: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
7: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
6: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर, एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
8: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69।

मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। ऐं अंगारे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे ऐं हिन में हफ़्ते जा टे ॾींहं जुमो छंछर आचर चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे। बाक़ी दवा मरीज़ खे स्टोर तां वठणी हूंदी आहे। ऐं असांजे प्रोग्राम में बेज़रिया लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301 196 851।

0: डॉक्टर साहब मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि। डॉक्टर साहब हिकु कॉल जी तरफ़ हलंदासीं, असां प्रोग्राम जी पहिरीं कॉल जी तरफ़। अस्सलामु अलैकुम, केरु ईंदा किथां खां? जी अजा, छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहब खां?
1: मथे में गोरियूं थियूं आहिनि, हेतिरी वॾी थी आहे, पतरे बि करे आ, नरम थी विया।
0: जी जी,
1: हुनजो हल
0: डॉक्टर साहब खे असां अवां रूबरू ॾेखारियो त वधीक बहितर आहे, वरना अवां खे ॿुधाए थो डॉक्टर साहब, रेडियो ॿुधो। जी सर, जी सर,
2: ईंदो त हुनखे ॾिसी करे पोइ सही नमूने सां दवा ॾेई सघिबी, वॾी महिरबानी।
0: बिल्कुल सर, ज़ाहिर आहे सर, साम्हूं ईंदो त हुन तरीक़े सां तव्हां मुआइनो कंदा त ओड़े हिसाब सां तव्हां दवा ॾींदा। लाइव कॉल जो नंबर हिकु दफ़ो अवां ॿीहर अवांखे रिपीट कराईंदासीं, 0301 91 8051।

0: डॉक्टर साहब मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि जिन में गुर्दे पित ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन ते कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। संदनि जोड़नि, गोॾनि जो सूरु, कुनरग जो सूरु, नक, कन, गलो, नज़लो, निछू, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फालिज, खंघि, टीबी, मैदे जो सूरु, मैदे जी अल्सर, तिली जो वधणु, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सावणो, चेहरे जी ख़ारिश, फट फुरड़ियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। हिकु ॿी कॉल जी तरफ़ हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। अलहमदिल्ला, ठीकु ठाक, तव्हां ॿुधायो छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहिब खां? जी जी जी हा बिल्कुलु, सुभाणे डॉक्टर साहिब क्लिनिक ते मौजूदु हूंदो। जी सर, एड्रेस तव्हांखे ॿुधायूं था। डॉक्टर साहिब हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पुटा पेट्रोल पंप कोटरी रोड में इलाज कंदा आहिनि। ठीकु आहे सर। हा वधीक तव्हांखे डॉक्टर साहिबु ॿुधाए थो एड्रेस, रेडियो ॿुधो।
1: बिल्कुलु, सुभाणे क्लिनिक ते मौजूदु हूंदासीं, बिल्कुलु रूबरू ॾेखारे मसइले जो जेको बि हल आहे।
0: जी सर, बिल्कुलु। ॿी कॉल जी तरफ़ हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। अदा सभु खां पहिरियां रेडियो पंहिंजो बंदि कयो। जी अदा, छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहिब खां?
2: असां इहो ई पुछण था चाहियूं त नंढिड़ो आहे हिकिड़ो असांजो 2020 में थियो आहे 8 तारीख़।
0: जी
2: जेको वधण न आहे उन
0: अदा रिपीट कजो, छा चयो?
1: 6 साल हले थो।

0: ॾेखारियो इनशाह ताला हुनखे दवा ॾींदासीं ऐं बिल्कुलु नंढिड़ो जेको आहे सो सिहत याब थी वेंदो।
1: ॿी कॉल जी तरफ़ हलंदासीं, ॾिसूं था कहिड़ा लाइन ते मौजूदु। अस्सलाम वालेकुम। हैलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
1: कहिड़े था, किथां खां, छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहिब खां? छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहिब खां?
2: नंढड़ी आहे, हुनखे थोरो माना दिमाग़ ते असर थी आहे, माना ॿुधे बि कोन थी, ॻाल्हाए बि कोन थी।
1: अच्छा, नंढड़ी जो उमिरि? अदा नंढड़ी जी उमिरि केतिरी आहे?
2: छोकिरी आहे, 12 सालनि जी।
1: अच्छा, ठीकु आहे, रूबरू ॾेखारे वञे त वधीक बहितर आहे, वरना मूंखे ॿुधाए थो डॉक्टर साहिबु, रेडियो ॿुधो। जी सर।
0: जी सर, बिल्कुलु, नंढो ॿार हुजे या वॾो, ख़ासि करे नंढे ॿारनि जे लाइ असांजो इहो ई चवणो हूंदो आहे, उन्हनि खे रूबरू ॾेखारियो त वधीक बहितर आहे।

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਾਲਜ ਤਰਫ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
1: ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
0: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਜੀ ਜੀ
1: ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕੁਛ ਮਾਨੀ ਖਾਵਾਂ ਥੋ ਤ ਐਲਰਜੀ ਥੀ ਤੇ ਪੋਇ ਛਿਕੂੰ ਬਚਨ ਥਿਊ ਐਂ ਬਲਗਮ ਬਚੇ ਥੋ।
0: ਅੱਛਾ, ਉਮਰ ਕਿਤਰੀ ਆਇਆ ਚਾਚਾ ਤਾਂ ਜੀ?
1: ਉਮਰ ਮਜਾ ਬਾਲ 60-70 ਸਾਲ ਆ।
0: ਠੀਕ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਂ ਕੇ ਬੁਧਾਇ ਥੋ ਰੇਡੀਓ ਬੁਧੋ। ਜੀ ਸਰ।
2: ਜੀ ਸਰ। चाचे की जी त उम्र जो सो माशाल्लाह सुठी है। उन चाचे सिर्फ़ यही बुधा तो मानी खाए तो एलर्जी थे थी या मानी खाण से या को अड़ी का शे सणबी वगैरह या खटी वगैरह शे खाण से तकलीफ थे थी तो रूबरू उन्हें खोले को बुधा। तो चाचे को यही चाहिए तो रूबरू डेखारे वजन उनका पुछी कर दवा दींदी इनशाला तला बिल्कुल सही थी।
0: प्रोग्राम आए सेहत की गाल्ह ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर मंजूर हुसैन महमूद साहब। प्रोग्राम एक बी कॉल की तरफ हलंदासीं।

0: सब लगे तो कॉल ड्रॉप थी चुकी है
1: दोस्तों खे यूज़ कंदासीं त थोरो बाहर निकरी करे न जिते एरिया हुजे खुलियल हुजे नेटवर्क सही हुजे त उतां बि ॻाल्हायूं
0: बिल्कुल सर एक बी कॉल जी तरफ हलासी अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम
1: अदा रेडियो सेट ऑफ कर जो
0: रेडियो सेट अदा पहिरियां बंद कर जो
2: जी
0: छा पुछण चाहे डॉक्टर साहब का
2: घर पे आया
1: अदा कॉल ड्रॉप कर बाबा जी एक कॉल ड्रॉप कर
0: सर असां लिसनर्स खे पहिरियां बि चवंदा आहियूं त जॾहिं बि कॉल कयो तव्हां त सभ खां पहिरियां वीडियो बंदि
1: करायो ख़राब करणो हूंदो आहे पहिरियां बि चयल आहे त कॉल जॾहिं तव्हां कयो त रेडियो सेट ऑफ करे पोइ ई कंदा कयो
0: बिल्कुलु सर
1: जी सर
0: प्रोग्राम में हिकु ॿी कॉल जी तरफ़ हलंदासीं अस्सलाम वालेकुम जी अदा छा पुछण चाहींदा डॉक्टर साहब खां
2: सर एलर्जी जे बारे में पुछण चाहींदा डॉक्टर साहब जी हॉस्पिटल ते बि वियासीं पर बचा करे आज बंदि पई ऐं असांजी नंढड़ी अचनि 7 महीननि जी हुनखे तमामु घणी ख़ारिश आहे एलर्जी नथी छॾे
0: जी जी
1: कॾहिं आया आहियो तव्हां बाबा हलो
2: जी जी सर
1: अदा कंहिंखे ॾेखारिया आहियो कॾहिं ॾेखारिया बाबा

0: ਦੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੰਦ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਸੁਭਾਣੇ ਸੁਭਾਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰੂਬਰੂ ਤੇ ਦੇਖਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਅੱਲਾ
1: सर इन करे बार बार असा एड्रेस एंड टाइम ता जो रिपीट कंदा हूं त
0: को पेशेंट है त मा पहिरां गाल के त असा देखो सारी कालू इंदी है ना मिसाल अंगारे जो दी त असा क्लिनिक ते बिठा हूं बाबा अंगारे जो दी क्लिनिक ऑफ होंदी है बाकी टाइमिंग जे हवाले से बेन दिन में टाइमिंग सुबह जो 10 बजे का ठीक है कदे लेट सवेल थी भी वींदी है कलाकद लेकिन जे को टाइम होदो है जे को दी रखेल होदो है वो दी असा जो कदे भी मिस न थिंदो है नंबर तव्हां वटि मौजूदु आहिनि पेशेंट खे जेकॾहिं देरि बि थींदी आहे त को बि पेशेंट असां सां टचिंग में हूंदो आहे कॉन्टेक्ट में हूंदो आहे उते बोर्ड ते नंबर लिखियलु आहे त उहो पुछी करे पोइ जेको आहे सो उते इवेट करे वेंदा आहिनि ऐं उहे दवा वठी वेंदा आहिनि इनजे करे अधे खे बि इहो ई चवंदासीं त तव्हां जेको आहे सो रूबरू ॾेखारे सघो था ऐं टाइमिंग तव्हां ज़रूरु जेको आहे सो नोट कजो ऐं ॾींहं अव्हांजे नोटेज में हुजनि
1: प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहब डॉक्टर साहब हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचार ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वदनपोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मैरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि ऐं अंगारे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे ऐं इन में हफ़्ते जा 3 ॾींहं जुमो छंछर आचर चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे बाक़ी दवा मरीज़ खे स्टोर तां वठणी पवंदी आहे ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिल थी सघो था असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-9896-8051 ऐं डॉक्टर साहब जो इहो साॻियो ई कॉन्टेक्ट नंबर आहे हिन ते तव्हां कंहिं बि वक़्तु कॉन्टेक्ट करे कंहिं बि बीमारी बाबति ॼाण हासिलु करे सघो था

ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-851 0301-2196-851।

0: प्रोग्राम में हिकु लाइव कॉल जी तरफ़ हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी। अदा कहिड़े किथां खां?
1: सर फ़कीराबाद खां था ॻाल्हायूं।
0: जी अजा, छा पुछण था हिन डॉक्टर साहिब खां?
1: सर पहिरियों माथे में तकलीफ़ हुई, माथे में दवा वरिती हुयसि।
0: जी जी।
1: हाणे कमज़ोरी रहे थी जिस्म में सर।
0: अच्छा, किथां वरिती दवा? अच्छा,
1: हाणे तबियत माना सही थी आहे। हाणे माना जंगनि में साई बि रहे थी, माना थकिजी थो पवां, माना हा में सोर बि पए थो।
0: जी जी, ठीकु आहे। डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाए थो, रेडियो ॿुधो। जी सर,
2: बिल्कुलु। हिकिड़ी मादे जी कमज़ोरी थी वेंदी आहे, उन खां पोइ ऐसा बि कमज़ोरी थी वेंदी आहे। हिकु त सौंफ़ हर खाधे खां पोइ मां हर मरीज़ खे ॿुधाईंदो आहियां, हर खाधे खां पोइ सौंफ़ जी चपटी जेको आहे सो वात में विझी छॾे माण्हू, उहा काफ़ी जेको आहे सो फ़ाइदे वारी आहे। उहा उनजी ऐसा बि कमज़ोरी बि दूरि कंदी आहे त मादो बि सही कंदी आहे। या उनखां अलावा अदपा बादाम, अदपा सौंफ़, अदपा मिसरी पाण में सफ़ूफ़ करे चमची सुबुह शाम खाइण सां काफ़ी हद तक फ़र्क़ु पइजी वेंदो आहे। लेकिन अञा बि कमज़ोरी घणी आहे त रूबरू क्लिनिक ते ॾेखारे वञनि। उन्हनि जी दवा थींदी आहे होम्योपैथिक में, जेकी हर लिहाज़ सां बहितरु हूंदी आहे। वधीक दवा ॾींदासीं, इनशा ताला ठीकु थी वेंदो।
0: प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमून साहबु, जेके मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि, जिन में गुर्दे, पिते ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन ते कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। संदनि, जोड़नि, गोॾनि जो सूरु, कुंजु रग जो सूरु, नक, कन, गलो, नज़लो, निछू, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु,

0: प्रोग्राम में एक बी कॉल जी तरफ हलंदासी। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम सर, छाल हाल सर?
0: अल्हम्दुलिल्लाह दा, तां बदायो केरे किथां खां?
1: सर मां कोटड़ी कंबीर खां मुकेश मोलाई पियो गलाया।
0: जी अदा, छा पुछन चाहिंदा डॉक्टर साहब खां?
1: सर इस वक्त जेको आ नरन में तकलीफ रहे थी।
0: जी जी,
1: तो डॉक्टर साहब को जो मशवरो कयो जा अची क्लिनिक ते मिलूं।
0: हाँ, कोटड़ी कबीर बिल्कुल करीब है, अवां रूबरू दिखारींदा तो वधिक बेहतर है। अवां के डॉक्टर साहब बुधाए तो रेडियो बुधो। जी सर,
2: गलण खां बिल्कुल होशियार पे लगो, ऐं अदे खे बि यही मशवरो ॾींदासीं त जेकॾहिं तकलीफ़ पुराणी आहे त बहितर ईअं आहे त रूबरू ॾेखारे वञो। वॾी महिरबानी।
0: प्रोग्राम से जी ॻाल्हि, ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहब। ऐं अवां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिल थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-8151। प्रोग्राम में हिकु ॿी कॉल जी तरफ़ हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
0: केरु ईंदा किथां खां?
3: मीरापुर खां ॻाल्हायो था, अली काटन हाजनेसार वारी मिल खां असांखे डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद सां ॻाल्हाइणो आहे।
0: जी जी, डॉक्टर साहब मुखातिब आहे, छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहब खां?
3: साईं डॉक्टर साहब खां इहो पुछणो आहे, इहो जेका कुझु खाऊं था पियूं था त माथे जे खाधे जे मना चिमड़ी थी पए।
0: अच्छा,
3: हलंदो नथी पई।
0: जी जी, ठीकु आहे डॉक्टर साहब, अव्हांखे ॿुधाए थो रेडियो ॿुधो। जी सर।
2: जी साईं, बिल्कुलु काफ़ी बहितर सुवाल आहे। हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे त हिकु त खाधे जा जेको रूटीन्स हूंदा आहिनि असांजा, उन हवाले सां जेकॾहिं माण्हू टाइम ते पंहिंजो खाधो खाईंदो आहे ऐं त उन सां काफ़ी फ़र्क़ु पइजे, ऐं ॿियो खाइण जो तरीक़ेकार सुनत नबवी जे मुताबिक़ आहे त अञा वधीक बहितर आहे। असां ईअं हूंदो आहे, ईअं कंदा आहियूं त जेका बेकुमलो हिकिड़ो खाधो खाईंदा आहियूं या चांहि ज़्यादा पीअंदा आहियूं, पोइ जेको आहे सो मादे ते भोजन पिणु रहंदो आहे, या सिगरेट बि पीअंदा आहियूं, लेकिन ईअं बि थींदो आहे जो मानी खाई वरी हिकदमि पाणी पी छॾींदा आहियूं, त उहो बि जेको आहे सो मादे जे लाइ हानिकार हूंदो आहे। हिकु त मानी खाइण खां अॻे अधु कलाकु अॻे पाणी पीअणु घुरिजे, ऐं मानी खाइण खां कलाकु ॾेढ खां बाद में पाणी पीअणु घुरिजे। इहो हिकिड़ो रूटीन आहे, ऐं मानी जेको आहे सो खाई यकदमि सुम्हणु न खपे, घटि में घटि ॿ कलाक उनजो वक़फ़ो हुजे, त इहो हिकिड़ो तरीक़ेकार हूंदो आहे। हुन खां पोइ सणबी शइ, चिकनाहट वारी शइ, तरियल शइ, खटी शइ, इहा भोजन पिणु कंदी आहे, उन खां थोरो परहेज़ कंदा कयो। ऐं उनखां पोइ जीरो ऐं सौंफ़ चमची चमची पाणीअ में काढ़े उनजो काढ़ो जेको आहे सो ठाहे करे उन में तव्हां अदरक बि मिलाए सघो था, उहो तव्हां सुबुह जो नेराने जेको आहे सो पीअंदव, इनशाला ताला उन सां काफ़ी अफ़ाको अची वेंदो आहे। जेके बि माथे ते ग़लीज़ जेके मादा अची वेंदा आहिनि उहे बि अख़राज थी वेंदा, अव्हांजो कॉन्स्टिपेशन जेकॾहिं कब्ज़ आहे त उहा बि ख़तमु थी वेंदी, अव्हांजो हाज़मो बि दुरुस्त थी वेंदो आहे। ऐं जेकॾहिं ईअं न त जीअं मां पहिरीं ॻाल्हि कई त सौंफ़ तव्हां हर खाधे खां पोइ ईअं बि चॿाड़े सघो था, उहो बि अव्हांखे फ़ाइदो ॾेई सघे थो। चांहि जो इस्तेमालु घटि कयो, घटियूं शयूं ॿाहिरियूं शयूं इस्तेमालु घटि कयो, इनशाला ताला काफ़ी फ़र्क़ु पइजी वेंदो। अञा बि फ़र्क़ु न पए त होम्योपैथिक दवा इस्तेमालु करे सघो था असां वटां, अला कंदो उन में बि अव्हांखे शिफ़ा मिली वेंदी। वॾी महिरबानी।
0: जी सर, प्रोग्राम जी लास्ट कॉल जी तरफ़ हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। जी अदा, केरे किथां खां? छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहब खां? जी अदा, इलाज बिल्कुलु मौजूदु आहे, अवां रूबरू ॾेखारियो डॉक्टर साहब खे। डॉक्टर साहब ॿुधाए थो वधीक। जी सर।
2: हा जी साईं, बिल्कुलु ॿुधाईंदासीं, उनजो इलाजु ट्रीटमेंट मौजूदु आहे, अलाह ताला जी महिरबानी सां सभई पेशेंट असांजे इन होम्योपैथिक इलाज सां इन मादे जे बीमारियुनि में या पिते में जेकी पथरियूं हूंदियूं आहिनि या जिगर ते जेकी सोज़िश चर्बी थी वेंदी आहे या गुर्दे में जेको किचरो अची वेंदो आहे उन सां अलहमदिल्ला उनखे शिफ़ा मिली चुकी आहे। असां अधे खे बि इहो ई मशवरो ॾींदुसि त मेहरापुर हालाणी वेझी आहे, मेहरापुर हिकु दफ़ो अची असां

0: वज्रा पोटा पेट्रोल पंप वहाँ जी एड्रेस बुधाई आयो वहाँ अची रूबरू डेखारींदा इनशाला तला दवा के हिसाब से जैसे दवा मिली मरीज खाई तो इनशाला तला काफ़ी अफाको अची वही
1: डॉक्टर साहब वक्त जो एहसास वक्त पूरा थी चुको है प्रोग्राम जो आखिर में पैगाम
0: जी बिल्कुल वक्त चवे आऊँ बादशाह वक्त कहो इंतजार न कह वक्त जो टाइम अवं अंदाजो पा लगे सको मैसेज यो है त हर वक्त खुश रहंदा करो छो जो खुशी रूह के तस्कीन पहुँचाई है रूह के खुशी तद तस्कीन पहुँचाई है जैसे रूह पाक हों रूह पाक तद जैसे अव हर वक्त वजू में होंद नमाज़ पढ़ना हो बड़ी मेहरबानी
1: असान प्रोग्राम सेहत की गाल वक्त भी अजाणी तो पौतो दुआए तो अल्लाह पाक तुम सभी के सदा तंदुरुस्त सदा खुश रखे इंदर प्रोग्राम तई इजाज़त दींदा पैं मेज़बान एहसान अली सियाल के अल्लाह हाफिज़।

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वैक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर। 03003385 69।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर।

0: गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियो ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385 69।

0: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।

0: जी जान तारो मसालो हर वे जे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
1: खुश खबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-335-69।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स। अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 0300-002734। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301-386-5453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
3: हाँ यचो, मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372-0242-460100।
5: माशाला फौजी पाई फैक्ट्री, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेहरापुर। असां वटि जॻहि जो ॾियारियूं, जॻहि जा पावा ऐं पाइप, ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में कालम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम, 0301-54-431-456 ऐं तौकीर अहमद, 0306-16-23-793।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप।
2: शो सुनने वालों को दिल की गहराइयों से वेलकम भरी कार खुश आमदी जी अनुशात के और पखेर राग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, मिल्क राइज ब्यूटी शो के साथ मैं हूं आबिद चौहान और आप सुन रहे हैं GFM 94 मैरापुर। तो दोस्तों, कल जो भी दोस्तों जिन्होंने पार्टिसिपेट किया प्रोग्राम में, जो है कि सवाल का जवाब दिया, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। और आज भी हम सवालात करेंगे और उनके जवाबात आप देंगे और इनामात भी मिलेंगे। कल की लिस्ट हमने जो है कि मलिक जफर इकबाल साहब को फॉरवर्ड कर दी है, उनको जो है कि आज कॉल किसी भी वक्त आ सकती है और बाकी जो आज हम सवाल शाम में उनको कल तक कॉल आ जाएगी। जी तो कल का सवाल था कि मिल्क राइस की कितनी और कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें हमने एक और इजाफा भी किया हुआ है, हम बताते हैं। लेकिन ठीक है, आपने प्रॉपरली किसी हद तक जिन्होंने जो रिप्लाई दिया कि मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्नी क्रीम, तो डेफिनेटली वो लोग जो है कि प्रॉपरली प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से रिप्लाई ठीक दिया। और जिन दोस्तों ने कॉल कनेक्ट हुई जिनकी या जिन्होंने टैक्स किया, हम उनके नाम जो है कि फॉरवर्ड कर रहे हैं और उनसे आज वो कॉल करेंगे तो उनसे हम फीडबैक ना फकत जो है कि प्रोडक्ट के हवाले से लेंगे कि उन्होंने इनाम जीता, लेकिन जो है कि उन्होंने यूज़ कब किए और यूज़ कब करनी है, उस हवाले से भी उनसे फीडबैक लेंगे।

और उसके अलावा अगर आपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करवानी है किसी और जनरल स्टोर पे, तो डेफिनेटली आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर डायल करना पड़ेगा, और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 03003105109। कॉल करके आपने बात करनी है मलिक जफर इकबाल और एम सिद्दीक साहब से।

आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए। और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कीमहा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 3105109, 03000 3105109। हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए। और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे।

जी वेलकम बैक प्रोग्राम मिल्क राइस ब्यूटी शो के साथ मैं हूं आबिद चौहान और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 94 मैरापुर। खूबसूरत मनकबद खामबाद में असी हाजिर थे हूं अवाजी खिदमत है में आए कालो को असा सवाल पूछा जो पुछो से अज असा नओ एकड़ो सवाल पुछंदा से बल्कि रिडल है गुजारत है पहली है तो सुनने के लिए आप तैयार हैं और जो है कि उससे पहले मैं आपको अपना लाइव कॉलिंग नंबर बताना चाहूँगा। हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03009319667। इस पे आप कॉल करके प्रोडक्ट के हवाले से फीडबैक भी दे सकते हैं और आज की रिडल पहली बूझ भी सकते हैं।

जी दोस्तों, जैसे ताई अवां जूं कॉल्स या टेक्स्ट मैसेज असां वटूं ऐं शामिल कयूं, असां वधंदासीं हिकिड़े ॿिए ख़ूबसूरत म्यूज़िकल ट्रैक ॾांहुं ऐं उहो ट्रैक इंजॉय कंदासीं गॾिजी। उन खां पोइ वापसि वरंदासीं सनम मारवीअ जे ख़ूबसूरत आवाज़ में। हीउ ट्रैक आहे अवां सभिनी सॼणनि जे नाम।

अजोकी रिडल अजोकी सवाल अजोकी गुजर जो जवाब ॾियण लाइ असांखे अवां असांजे लाइव कॉलिंग नंबर ते कॉल कंदो ऐं अॼोको जेको अॼोकी गुज़ारत आहे उहा आहे उहो क्या चीज़ आहे जंहिंसे आप बिना छुए बि तोड़ सघंदा आहियो उहा कहिड़ी शइ आहे जंहिंखे अवां बिना हथ लाहिण जे बि टोड़े सघो था असां सां गॾु कॉलर लाइन ते मौजूदु आहिनि कॉल अटेंड कंदासीं माज़रत खायूं कॉल ड्रॉप थी वई असां अवां जा मैसेज पिण प्रोग्राम में शामिल कंदासीं ऐं इन सां गॾु असां हींअर ॿुधंदासीं हिकिड़ो ख़ूबसूरत ट्रैक उन खां पोइ वरी अवां जूं कॉल्स प्रोग्राम में शामिल कंदासीं ॿुधंदा रहो जी एफ एम 94 मैरापुर प्रोग्राम मिल्क राइस ब्यूटी शो

0: आप सुन रहे हैं GFM 94 मैरापुर और मैं हूं आबिद चौहान। मिल्क राइस ब्यूटी शो में शामिल करेंगे आपकी लाइव कॉल्स और आपसे बातचीत करेंगे और प्रोडक्ट के हवाले से भी सवाल होगा। प्रोडक्ट के आपका रिस्पांस चाहिए हमें कि अगर आप 3 दिन में रिजल्ट चाहते हैं, गोरा होना चाहते हैं, अपने चेहरे में निखार और फर्क देखना चाहते हैं तो आपने 3 दिन, फकत 3 दिन आपने जो है कि मिल्क राइस की प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है। तो कॉलर है हमारे साथ, कॉल अटेंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम केयर साईं। हेलो,
1: मुझे हुसैन बख्शियाल जो तक कैची चल नवाबी
0: सुन सकते हैं। हुसैन बख्शियाल साहब कड़ालन खुश आए हो।
1: हां जो परस्तार खुश आया ता जे दुआम सा बिल्कुल किस्सा कया हां जी आवे खुश आयो
0: दुआ अल्लाह का एहसान
1: बाबे खुश हो जा बात हो जो आई माशाल्लाह बड़े इंतजार था वतन गुजारना में साईं जन जो प्रोग्राम अचे रात जा 8 थन आई असा जो प्रोग्राम शौक सा बुधो आई प्रोग्राम में इख्तियार पंज मिच मिच साईं जन जो गाने बुधो।
0: वडी मेहरबानी, वडी मेहरबानी, लख लाइक जो के गुजार जे हवाले सा छ चंदो।
1: हां नहीं मुझे जो अंदाजो आए त माना बिना शवान के जो टूटी तो पया तलांज हुआ है साईं खामोशी
0: खामोशी यो अमा जो रिप्लाई असा नोट करे छडियो से।
1: हां
0: को दोस्तन जा, को दोस्तन जा, दोस्तन जा नाम शामिल कर चाहि दो।
1: हां मुझे नवाज सर दोस्त प्रोग्राम बुदंदा सही बिल्कुल शौक है चा बुदंदा असलम चन्ना ता प्रोग्राम बुदे तो मीर मन ख्याल वन प्रोग्राम बुदे तो न केला रेहान ख्याल आई हीरा जान ख्याल वन प्रोग्राम बुदे तो आका
0: चल अमा जी सजी संगत के मुझे तरफा भी सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम सही अल्लाह से हां क्या बात करे
0: वडी मेहरबानी कुर्ब लख लायक मोहब्बतों।

जी दोस्तों, तमाम प्यारा कॉलर्स ऐं तमाम प्यारा माण्हू, सभई महबूब माण्हू, ख़ूबसूरती हिकु ख़ुदा जे तरफ़ां उहो ख़ूबसूरत ॾिनल ॾात आहे, उहा मौजज़ो आहे। हूअं त ख़ुदा हर चहिरे खे ख़ूबसूरत बणायो आहे, पर उन में थोरो घणो निखार पैदा करण लाइ असां पंहिंजे हिसाब सां, पंहिंजे तौर ते पंहिंजे पाण खे ख़ूबसूरत बणाइण जी कोशिशि कंदा आहियूं। सो हर इंसान जो हक़ आहे त ख़ूबसूरत नज़र अचे, ऐं असांजी प्रोडक्ट मिल्क राइस ब्यूटी जेकी बि प्रोडक्ट्स आहिनि, उहे दावा कनि थियूं त टिनि ॾींहंनि में, असांजी दावा आहे त टिनि ॾींहंनि में। सो मां बार बार इन करे चवां थो त असां दावा कयूं था, असांखे दलील जो मौक़ो ॾियो, असांजी प्रोडक्ट इस्तेमालु कंदो, उन खां पोइ अव्हां खां फीडबैक वठंदासीं। फ़क़ति टिनि ॾींहंनि में अव्हां पंहिंजे अंदरि बदिलाउ, तब्दीली ॾिसंदव।

मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल आहिनि मैरापुर जे तमामु नंढे वॾे स्टोर ते, जंहिंमें असां ख़ुशी जनरल स्टोर मैरापुर, फैज़ान जनरल स्टोर मैरापुर, कामरान मोहल जनरल स्टोर मैरापुर, हफीज़ जनरल स्टोर मैरापुर, कोरी जनरल स्टोर मैरापुर, जावेद जनरल स्टोर मैरापुर ऐं अलकरम जनरल स्टोर मैरापुर। इन खां अलावा जेकॾहिं अवां कंहिं ॿिए जनरल स्टोर ते प्रोडक्ट जी अवेलेबिलिटी कराइणु चाहियो था त या वरी प्रोडक्ट जे हवाले सां फीडबैक ॾियणु चाहियो था त पोइ अव्हांखे असांजो हेल्पलाइन नंबर डायल करणो पवंदो। असांजो हेल्पलाइन नंबर आहे 0300-310-5109। इन ते कॉल करे अव्हां ॻाल्हि ॿोल करे सघो था मलिक ज़फ़र इक़बाल ऐं एम सिद्दीक़ साहब सां।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: बंद न कयो एमकेएम पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी चयो आहे त सूबे जी विरांग के गदारी करार दींदड़ सब खां वडी गदारी आहे। असांजा वडा लड़ पड़ाण करे कायदे आजम के पाकिस्तान में आया हुआ, खबर न है कहें उन्हें भुट्टो के पाकिस्तान में धिके छो। अज कराची की आबादी 2 करोड़ का वधीक है। समूरी मुल्क में आबादी के हिसाब से सूबा ठहन घुर्जन। वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल चयो तो मौजूदा निजाम में मुल्क नथो हली सके, हू कहें भी फोरम ते कहें भी वक्त सूबन के हवाले से गालण लाय तैयार है। अवाम के अख्तियार देणो पवंदो त जंहिंखे पसंद न करे उनके हटाए सके।
2: ये 4 महीनों से चल रहा है, आपने देखा होगा बजट इजलास में भी ये खामा हुआ, तब से लेकर कहा गया है कि भाई इसको तोड़ेंगे जिनके लिए मौके वतन है, ये तो कोई जरूरत नहीं कर सकेगा। लेकिन ये जो खाया है, जो कब्जा किया है कि ये जो आपने सौदे किए ये वापस करें, ये आपके इस रेजोल्यूशन में तुम न करें कि जो आपने देश किया है जमीने वापस करें, तो हमारा लैंड वापस करें।

0: सिंधी कौम परस्तन वकील सोनावर्धन पारा सिंधी वैद खिलाफ थींदड़ साजिशन के नाकाम बणाइण जो वचन। सिंध यूनाइटेड लायर्स फोरम के सेमिनार में सिंध के इम्कानी विराग के खिलाफ ठहराव मंजूर। कराची में सेमिनार के खिताब कर सैयद जैन शाह मोहिबे वतन सिंधी कदें भी सिंध तोड़ न ींदा। अवा ठहराव वो ड्रामो करप्शन जो हिसाब किताब गुम ना कर सको। सूबन की घनी आमदनी वारिन शहर से वफाक कब्जो कर वेठो है। कोर्ट सिंध के वापस कर पंजाब के लखें एकड़ जमीन आबाद करण लाए सिंध के बंजर बनाने की साजिश थी रही है। कराची बार एसोसिएशन के सदर आमिर नवाज राय चयो था सिंध के विराग के खिलाफ सिंध के अवाम वकील मुतहद हैं। सिंध बार काउंसिल के सदर अब्दुल असीफ जमाली चयो था सिंध पाकिस्तान के क्याम लायक किरदार अदा कियो जैजो कदर करण घुर्जे। बैरिस्टर सलाहुद्दीन चयो था मोहसिन नकवी मुल्क के भी क्रिकेट वांगुर समझी रो है। सूबन के विरहण जड़ा गैर संजीदा नवा तजुर्बा करण बदरा मसलन जो हल गोल्यो वे।
1: सिंध के मकानी निज़ाम बाबत तरमीमी बिल से गौर विचार लाए सिंध असेंबली की 12 रुकनी खास कमेटी जो पहरियो इजलास। एमक्यूएम जमात इस्लामी ए पीटीआई तरमीमी बिल के रद्द कर छोड़ो। कमेटी सरबराह जयाल हसन लंजार चयो तो मकानी निज़ाम बाबत एमक्यूएम जो बिल ना आयो। असेंबली की इजाजत सा ही उन गौर किया वो। नो चूंड शेड्यूल जारी थन्दे ही इंतजाम हवाले एडमिनिस्ट्रेटर रुगो रोजाने जहा मामला डी एमक्यूएम के तहा अहमद चयो तो दांदली ए जाली मेयर के मजबूत करण लाए कानून साजी कई पी वे। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक चयो तो हू सियासी एडमिनिस्ट्रेटर से इतफाक नथा कन। अड़ी तरमीम आई तो अदालत जो दरवाजो खिड़कायो वेंदो। पीटीआई के शबीर कुरैशी चयो तो अण चूंडियल नुमाइंदन के यूसीए में विहारण मुनासिब ना है। अण धुरिया एडमिनिस्ट्रेटर मुकर कया वन।
2: We've had discussions. The Houthis called us, and they don't want to fight with us. They let us know they don't want to fight with us. They don't want me to go after them. They don't want us to go after them. But they've called and they've talked to us, and they don't want us to. They would much prefer not having us involved. And they're letting most ships go through. This is one country that they're not too happy with, and we'll get that straightened out.
0: हुसैन फोन ते बुधायो आहे त अमेरिका सां जंग नथा चाहिनि। जहाज़नि खे बि गुज़रण ॾेई रहिया आहिनि। रुगो हिकु मुल्क खे रोके रहिया आहिनि। आमिर सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब जे तेल वारनि पाइप लाइन्स ते हमलनि जो ज़िमेवार ईरान खे करार ॾींदे चयो आहे त ईरान सां जंग ख़तम थींदे ई पेट्रोल बि सस्तो थी वेंदो। सऊदी वली अहद मुंहिंजो सुठो दोस्त आहे, सभु कुझु ठीकु थी वेंदो। सऊदी अरब जी पाइप लाइन ते हमले जो ज़िमेवार ईरान आहे। अपना हरमुस ते कंट्रोल अमरीका जो आहे।

0: अमेरिका जारियत बंद करे तो आबना हुर्मस खुली वो आबना हुर्मस बाबत सूमर से ओमान से माहदे से सयू थी वेंदी। ईरानी सदर मसूद पशकान है अरब मुल्क की सरजमीन त ईरान से हमला थिया। अमेरिका के पाबंदियों नाकाबंदी खत्म करण घुर्जे। इस्माइल बकाई आबना हुर्मस जो कंट्रोल ईरान वट है। तेल कीमत में वाद जो जिम्मेवार भी अमेरिका है। सऊदी अरब उर्दन जापान के ईरान खिलाफ ठहराव की हिमायत करण से नतीजा भोगना पौंदा। ईरान की कौमी सलामती बाबत सलाहकार इब्राहिम अजीजी तो मुतालबन की महिता ती अमेरिका से गाल नी दिय।
1: यमन के हुसैन बाबुल मुंदब जो कंट्रोल संवरण बाद आलमी आफी रस्ते में गश्त शुरू कर छो। बाबुल मुंदब के अहम बेट मेवन से भी कब्जे की दावा। यमनी फौज है मका बाबुल मुंदब में हुसैन के ताकत से बमबारी कई है जै दौरान हुसैन जो वो नुकसान थो है।

पाकिस्तान पारां सऊदी अरब ते हमलनि जी मज़म्मत, हमला खिते जी अमुन ऐं इस्तेहकाम लाइ ख़तरो करार। परॾेही तर्जुमान मूजिब सऊदी अरब जे तेल लाइननि ते ड्रोन हमलनि सबबि शहरी बि ज़ख़्मी थिया आहिनि। हमला आलमी कानूननि जी भञकड़ी आहिनि। हमलनि सां खिते जो अमुन ऐं इस्तेहकाम मुतासिर थी सघे थो।

0: इंतजार कंदो रात मुझी घरवारी जी डिलीवरी यकीन कंदो मा गाड़ी वाला दे बिम मा उने के जब डिलीवरी मसलो हलो खैरपुर चई पेट्रोल महंगो थी या 3000 रुपया किराया वठन मा खैरपुर ताई आखिर तड़पी तड़पी जको उने जो बार होत थी एड़ो असा ना कई हशर
1: मानु जो जीन जंजाल थी या गाड़ी कडन जेड़ा कोन मानु परेशान लगा
2: महंगाई जो भूत बोतल में निकली आयो गरीब माओ के
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105109, 03000-3105109।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह। हर अरबा, खमीस, जुम्मे, छंछर, आचर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: मेरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
1: हाणे ई अचो मेरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-460-1000

0: कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
4: राबते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नज़द रेलवे लाइन मेहरापुर राबते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: जा पीउ रेडियो ते चारे मसाले जो बुधाइन पया भला इहो त बुध आई वठी अच
3: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा
4: हा भाग भरी चंगो थो लगे मा हाणे ई थो वठी अचा
5: जी जान चारो मसालो हर वेजे पंसार स्टोर ए जानवरन जे डॉक्टर खा नालो वठी खरीद करियो
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

0: poetry, it is around.
1: ओवर रिएक्ट किया है हमारी नजर में, और जिस तरह से वो मामले को ले है सिंध असेंबली में, मैं समझता हूँ कि वो उनका एक पॉलिटिकल इकदाम था जिससे यकीनन उनको सियासी तौर पे जो है वो फायदा हुआ।
2: वफाकी हुकूमत न मनसूबन वाले मामले ते मुल्क में रेफरेंडम कराने जो इशारो दे छो। वजीर आजम के सियासी मामलों वाले सलाहकार राणा सनाउला चाहे तो न मनसूबन के हवाले से फैसलो पार्लियामेंट कंदी, गडल पार्लियामेंट मंजूरी दिनी त उनखा पोई रिफंडम थिंदो। हुकूमत अकेले सिर यो फैसलो नथी करे सके। मुस्लिम लीग नून नमन नून समेत सभी पार्टियों पार्लियामेंट के फैसले के तस्लीम कंदियो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे राणा सनाउला चयो त इकोनॉमिक फोरम या सेमिनार में सूबन वारे बहस जो नतीजो न निकरंदो। आवाम नवा सूबा चाहे तो केर भी रोके नथो सके। पीपल्स पार्टी सूबन वाले मामले ते जरूरत खां वधीक रदअमल दिनो आहे। डिक्टेटर के कालाबाग डैम ठाण न दिनो त सिंध जो विरांगो किन थियण डींदासीं। सूबन जो गालियों करण बंद कयो न त एमआरडी जेड़ी तहरीक शुरू थी वेंदी। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़े जो केएन शाह में एमआरडी के शहीदन की वर्सी तकरीब के खिताब। निसार खोड़ो चयो त कुछ मानू असा के काक्रोच पे चवन, जेकरे काक्रोच निकता त अवां रही न सकंदा। सिंध जो विरांगो कदें भी

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GAFM 94।